0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block 6.

कीर्ति हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो है, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस किताब से बीती कड़ी में हमने बहुत सारी बातें की, हमने क्या क्या नई नई चीजें सीखी। देखिए, वैसे हर कोई इंसान समझदार होता है ना, लेकिन हम अपनी शक्तियों को भूल बैठते हैं। क्यों भूल बैठते हैं? परिस्थितियों के वशीभूत होकर भूल जाते हैं। हर किसी की जिंदगी में इतनी टेंशन है, बीमारियां हैं, घर के कलेश हैं, नौकरी की दिक्कतें हैं, या हर किसी को इतनी सारी परेशानियां हैं, हर इंसान भीतर से भरा बैठा है। आप जरा सा किसी को छेड़ दीजिए, वो बरस जाता है। ऐसे में अगर आप लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो कंट्रोल करके नहीं चला पाएंगे आज की जिंदगी में। अब लोग डरते नहीं है, अब लोग सामना करना शुरू कर देते हैं। आपने सुना है ना कि अब अगर कोई नाराज हो जाए ना, तो लोग उसे मनाना पसंद नहीं करते, छोड़ना पसंद करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें व्यवहार कुशल होना पड़ेगा। तो ये किताब हमको क्या सिखाती है, इस बारे में आज और चर्चा करेंगे। जुड़ जाइए मेरे साथ, शुरुआत कर रहे हैं इस बढ़िया से भजन के साथ।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बहुत ही खूबसूरत किताब, बहुत प्यारी किताब है, दुनिया में बहुत ही प्रभावशाली किताब है। लोग इसको पढ़ते

हैं वो जबरदस्त है। तो मैं इससे कुछ किस्से लेकर कुछ बातें जो हमको समझ नहीं चाहिए, मुझे भी बड़ा मजा आता है जब मैं ऐसी किताबें पढ़ता हूं तो मेरी भी समझ बढ़ती है, तो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूं। दोस्तों ये किताब से हमने बहुत कुछ सीखा पिछले कार्यक्रम में, आज बात करते हैं जैसे किताब ने हमको सिखाया हमें अच्छा श्रोता बनना चाहिए, अच्छा सुनने वाला। अक्सर हम सब अपनी कहानियां दूसरों को बताना चाहते हैं, अपनी बातें दूसरों को बताने में लगे रहते हैं, हम दूसरों की सुनना नहीं चाहते, हमें दूसरों की बातें सुननी होंगी, दूसरों की बातें सुनकर उसके मन की जाननी होगी और उसके बाद हमारा काम आगे बढ़ेगा। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है, जब आप सामने वाले की सारी बातें सुनेंगे तब आप एक अच्छी बात कह भी पाएंगे, यही सिखाती है हमको किताब। सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराना सीखिए। किताब हमको सिखाती है कि हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, आप लोगों को महत्व देते हैं तो वो भी आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। सामने वाले को बताएं कि वो महत्वपूर्ण है, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको इम्पोर्टेंट बना देता है। ठीक है, हर किसी का अपना महत्व तो है ही, वैसे भी दुनिया में, इस दुनिया में कोई कम नहीं है, सबको ईश्वर ने कुछ ना कुछ गुण कुछ ना कुछ ज्ञान देकर तो भेजा ही है, तो ये हमारे व्यवहार कुशल होने को और इम्प्रूव करेगा, बढ़ाएगा।

बहस जीत कर भी हार सकते हैं हम, बहस में जीतने के बाद भी हम रिश्ता हार जाते हैं। कई बार शांत रहना और समाधान ढूंढना सही साबित होने से अधिक लाभदायक होता है। बहस में जीतना जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी से किसी वजह से परिवार में, बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, फैक्ट्री में, कंपनी में या कहीं भी बहस करने बैठ गए हैं, तो हो सकता है आपके तथ्य और आपके फैक्ट्स की वजह से आप जीत जाएं, लेकिन आप हारेंगे एक चीज उस दिन, रिश्ता। इसीलिए किताब हमको सिखा रही है हमेशा बहस को प्रेफर नहीं करना, बहस रिश्ते खराब कर देती है। बहस नहीं करनी है, समाधान ढूंढना है, और समाधान प्यार से, मुस्कुराकर, शांति से मिल जाता है। ये भी थोड़ी देर पहले सिखाया ना किताब ने हमको। यदि आप गलत हैं तो तुरंत स्वीकार कर लीजिए दोस्तों। किताब अगली बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमको सिखा रही है कि गलती मान लेना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास की निशानी है। इससे सामने वाले का गुस्सा भी कम हो जाता है और आपका सम्मान भी बढ़ता है। गलती अगर हो गई है तो मान लीजिए, बल्कि आत्मविश्वास की ये निशानी कहलाती है। गलती किससे होती है? गलती उस व्यक्ति से होती है जो कुछ नया कर रहा है, जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ करता ही नहीं है, उससे कोई गलती नहीं होती। ना उसकी कभी किसी से झगड़ा होगा, ना उसकी कभी किसी से कोई बात बिगड़ेगी, ना उसका कभी कोई नुकसान होगा, ना उससे कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है। गलती हमेशा उस व्यक्ति से होती है जो कुछ करना चाहता है। अब कुछ करके देखेंगे, प्रैक्टिकल कुछ होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, नुकसान हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। गलती को सुधारना और गलती को स्वीकार करना सबसे जरूरी है। तो अगर आपको फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि हाँ गलती हो गई है, तो उसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यह है मेरठ का नंबर 1 सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो। हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल नामक पुस्तक के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यदि आप गलत हैं तो तुरंत स्वीकार करें। थोड़ी देर पहले हमने यही चर्चा की। अगली जो बात किताब हमको सिखाती है वो बहुत ही बेहतरीन है। बातचीत की शुरुआत मित्रतापूर्ण ढंग से हमको करनी चाहिए। यदि शुरुआत ही कठोर होगी तो आगे की बातचीत और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, किसी भी बातचीत की शुरुआत मित्रतापूर्ण ढंग से करनी चाहिए। नरम शुरुआत अक्सर कठिन समस्याओं का भी समाधान निकाल देती है। बड़े बुजुर्गों ने कहावत सुनाई थी, कड़वा बोलने वाला अपना शहद भी नहीं बेच पाता और मीठा बोलने वाला अपनी मिर्ची भी बेच जाता है। इसीलिए दोस्तों, बातचीत की शुरुआत मित्रतापूर्ण ढंग से हमको करनी चाहिए। किताब हमको यही सिखाती है। हमें किसी से झगड़ना या लड़ना नहीं है, हमें अपनी बातचीत को आगे बढ़ना है, हमारे काम आगे निकालने हैं। हम यहाँ दुनिया में लड़ने झगड़ने या युद्ध को जीतने नहीं आए हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, सामने वाले से सम्मानजनक मुस्कुराकर बात करें, जैसा कि किताब ने थोड़ी देर पहले भी हमको सिखाया। किताब सिखाती है, सामने वाले को बोलने दो, उसकी बात सुनो। लोग अपने विचारों को अधिक महत्व देते हैं। यदि वे अपनी बात खुलकर रख पाते हैं तो वे आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। अगर आप सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे तो उसके मन में, सामने वाले के मन में चलता रहेगा, मेरी भी कहनी है, मुझे अपनी बात कहनी है, तो इस चक्कर में वो आपकी भी नहीं सुनेगा और उस चक्कर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और पता चलता है काम सारे बिगड़ते हैं। आसान तरीका सबसे अच्छा यही होता है, मित्रतापूर्ण, प्यार से, सम्मान से, नाम लेकर, इज्जत से। और जैसा किताब ने थोड़ी देर पहले हमको बताया कि हमारा सबसे अच्छा हथियार मुस्कान है। जिससे भी मिले मुस्कुराकर मिले, जब भी बात की शुरुआत करें मुस्कुराकर करें, जब भी बात को समाप्त करें मुस्कुराकर करें। ये आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। आगे कुछ और बात करेंगे, सुनते रहिए आपका अपना सुभारती आजाद हिंद रेडियो।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हरे कृष्णा। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मेरा नाम वास्तु कृष्णा है और आज बुधवार का पावन दिन है। मौसम बहुत ही खूबसूरत है और ईश्वर को हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। हर नए दिन, नई जिंदगी, नई तरोताजगी

0: अच्छे विचार के साथ हमें अपने हर दिन की शुरुआत करनी चाहिए।
1: हे कृष्ण तुम ही सर्वस्व मधुर, मधुराधिपति सर्वस्व।
0: भगवान श्री कृष्ण भी भागवत गीता में हमको यही सिखाते हैं कि हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। सब कुछ प्रभु के श्री चरणों से शुरू होता है और वहीं पर खत्म भी होता है। जिस इंसान को ये बात ध्यान रहती है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी भी उसके जीवन में नकारात्मकता हावी नहीं होती। कल की ही तरह आज भी हम चर्चा कर रहे हैं हाउ टू विन पुस्तक नाम के बारे में।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल नामक पुस्तक के बारे में। कुछ ये किताब हमको सिखाती है जिंदगी में व्यवहार कुशल होना। ये नहीं बताती कि हमें कंट्रोल कैसे स्थापित करना है, लोगों के ऊपर नियंत्रण कैसे लेकर आना, ये नहीं सिखाती। वो सिखाती है व्यवहार कुशल कैसे बनना है, न किसी को परेशान करना, न किसी का दमन करना, बल्कि हमारे काम निकलने चाहिए और हम एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर उभरे। तो किताब हमको सिखा रही है अगली बात कि आदेश मत दीजिए, सुझाव दीजिए। ऐसा करो की जगह क्या ऐसा करना बेहतर होगा। कहने से लोग कम विरोध करते हैं और सहयोग बढ़ जाता है, सुझाव सुनना अच्छा लगता है। तो अगर अभी तक आप अपने घर में बच्चों को, अपने छोटों को या किसी को भी आप ऑर्डर्स दे रहे हैं, ऑर्डर देना बंद कर दीजिए, सुझाव देना शुरू कर दीजिए और सुझाव लेना भी शुरू कर दीजिए। जब हम किसी से सुझाव लेते हैं तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो सुझाव लेना कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी के पास कुछ टैलेंट है, कुछ ज्ञान है। सुझाव लेना अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं होती। ऐसा करके हम एक अच्छे संबंध स्थापित करने की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9639012111। गाड़ी में कहीं पर चले जा रहे हैं तो आसपास के ट्रैफिक का हालचाल भी बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, इसीलिए कभी भी ओवरटेक करने की कोशिश मत कीजिए, ओवर स्पीड मत कीजिए।

या कुछ लंबे समय बाद मिले, पर मन शांत रहता है। चिंता हमें कमजोर बनाती है, लेकिन कर्म हमें मजबूत बनाता है। और इस कर्म को हमें डेडिकेट करना चाहिए भगवान को। भगवान गीता में हमको ये सिखाते हैं कि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है मेरी

दिया हुआ है। जब हम ऐसा करके कोई भी काम करते हैं तो रिजल्ट देर से मिले या ना मिले, पर हमें संतुष्टि रहती है कि एक दिन भगवान हमारे कर्मों का फल हमें जरूर देंगे। और ये तो हम सभी जानते हैं कि कर्मा इज बैग।

गाड़ी में है तो सीट बेल्ट लगाइए, ओवरटेक करने की कोशिश मत कीजिए। बरसात का मौसम है, कई बार सड़कें गीली होती हैं तो दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और अगर एक दूसरे से रेस लगाने की कोशिश करेंगे

0: हरे रामा हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग वंदे मातरम। सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत करता हूं फिर से। और अब यहां पर आप देशभक्ति कार्यक्रम की जो हमारी सीरीज है राष्ट्र चेतना, अब ये शुरू हो चुका है। आपकी पसंद के देशभक्ति तराने भी चलेंगे और यहां पर हम सिविक सेंस की बात करेंगे, हम यहां पर राष्ट्र चेतना की बात करेंगे। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं।
1: Imitations.

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं वास्तु कृष्णा। भारत और भारत की संस्कृति, दोस्तों ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना, जिसका आधार है राष्ट्र अनुभूति। किताब के लेखक यानी परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको समझाते हैं भारत और भारतीय संस्कृति के बारे में। भारत दो शब्दों का समुच्चय होता है, भा और रत। यानी भा का अर्थ होता है प्रकाश और रत का अर्थ होता है लीन रहना। इस नाते भारत का अर्थ बनता है वो क्षेत्र जहाँ के निवासी सदा ज्ञान प्राप्ति में लीन रहते हैं, उस क्षेत्र को भारत कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भारत राष्ट्र की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति का वर्णन भी मिल जाता है। विष्णु पुराण में भारत वर्ष की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख मिलता है। ऐसा भूखंड जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वही भारतवर्ष है। आर्यवर्त, अधिकांश प्राचीन ग्रंथों में भारत के लिए आर्यवर्त नाम का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं इसका आशय संपूर्ण भारत से लगाया गया है। के शताब्दियों तक भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का प्रयोग ही होता रहा। आर्यवर्त का नाम भारतवर्ष में कब और कैसे परिवर्तित हुआ, इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। जैसे एक मत के अनुसार ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारतवर्ष कहा गया। दूसरा, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारत कहा गया। एक प्रसंग के अनुसार जिस क्षेत्र में राजा भरत की प्रजा रहती थी उस क्षेत्र को भारत कहा जाने लगा। भारत एक अति प्राचीन राष्ट्र के साथ साथ विश्व का मार्गदर्शक भी रहा है। भारत के मूल चरित्र को जो भाव प्रभावित करते हैं उनमें प्राणी मात्र के प्रति अपनत्व भाव, सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के प्रति परम निष्ठा और जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करना, प्रत्येक विचार को सम्मान देना, प्रगतिशील दृष्टि प्रमुख है। यदि दार्शनिक आधार पर भारत के मूल चरित्र को परिभाषित करें तो वो सत्यम शिवम सुंदरम के महासूत्र से निहित है। जो सत्य है वही कल्याणकारी है और वही सुंदर भी है। स्वागत है आपका सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना में।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। प्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: नमस्कार, मैं मनोज वाजपेयी। मेरा बचपन ऐसे ही एक छोटे गाँव में बीता है और मैंने लोगों को काला आजार की बीमारी से होने वाली तकलीफों से लड़ते हुए देखा है। इसलिए मैं जानता हूं कि काला आजार जैसी जानलेवा बीमारी कितनी तकलीफ दे सकती है। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है, उसी तरह काला आजार बालू मक्खी से फैलने वाली एक घातक बीमारी है। तो आज मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, शरीर में कालापन दिखे या पेट में सूजन रहे तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में इसकी जांच कराएं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में केवल मुफ्त जांच और इलाज ही नहीं, मजदूरी का मुआवजा भी मिलता है। बस एक आखिरी बात, जब भी सरकारी छिड़काव कर्मी बालू मक्खी के खात्मे के लिए आपके घरों में आए तो कृपया उनकी सहायता पूरी तरह से करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा सहयोग खत्म करेगा काला आजार रोग।
4: स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: ये एनटीडी है। तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहां पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो गड़बड़ आइटम होता है, जहां पे इन्फेक्शन होता है उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन होती है, वन इज एक्यूट यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देर इज फीवर और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज, और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडिमा एक होता है, लिम्फेडिमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में जहां ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं, स्क्रोटल एरिया होता है, वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों के किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी, और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती है। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट पे जो पिक्चर है, इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है, ये लिम्फेडिमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है, ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है, और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा माइक्रोफाइलेरिया बेबी उसके अंडर जाता है शरीर में, और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं, दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रोफाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है, वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद, मोस्टली मिडनाइट में, हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए, ब्लड टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, WHO का सिस्टम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं, और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त रक्त सैंपल लिया जा रहा है, और एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है। और इसके लिए क्या करना है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाएं बढ़ती है जिसको सभी लोगों को उसका सेवन करना होता है। इसमें आप देखेंगे जो हरा कलर दिखाई पड़ रहा है मैप में, चलाया जाएगा, उसकी सूची अर्चना जी आपको दे देंगी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस जिले या उसके आसपास के जिले के होंगे, इसीलिए आपको इसमें इनवाइट किया गया है। उसे हम कहते हैं DA, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने क्षेत्र का पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा पोलियो में एक माइक्रो प्लान बनता था, पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल के से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को हमें ट्रैक करना पड़ता है और सबको देना है दवा, एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं, या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो, अदरवाइज एवरीबडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है, और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले ही उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूं, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे वर्कर जाते हैं घर पे, जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन। हम तो यहां तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ही ये विदेश से आई हैं और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए, सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ देम फील कि हम क्यों खाएं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हम तो गुड नाइट कॉयल लगाते हैं, हमारे पास मच्छर काटने का भी नहीं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कभी तो पार्क में निकलते होंगे, कभी तो मार्केट जाते होंगे, क्या वहां मच्छर नहीं काट सकता? और ये जो मच्छर काटता है, ये मच्छर क्यूलेक्स वेराइटी का होता है। मच्छर की फैमिली होती है, चार मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, मंसोनिया होते हैं। लोग खाते नहीं थे, तो ये रीजन है लोगों ने दवाएं क्यों नहीं खाई थी। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया कि नहीं, आपको घर में दवा बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है, तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई।
1: क्या
0: जो सेकेंड कैटेगरी है, अबसेंट वाली, ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वेर नॉट एट होम। ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके, या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की पीएससी या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में, 18%, ये रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए, आप जो नहीं खा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से, और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके में। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया था, हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार निम्फोडेमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सके, हाइड्रोसिल केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए, बाएं तरफ अनेमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सेंट्रिश की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनेमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है। जो दवाएं दी जाती है इस मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, डीईसी एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और डीईसी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रो फाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजोल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृमि, जो मैं पहले बता रहा था आपको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मैल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनीमिया का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म, ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है। जहां जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवरमेक्टिन उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा, अनिमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जिसे स्केबीज है, जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो जुए होते हैं, आइवरमेक्टिन से वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रिपल ड्रग में न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, हुकवर्म और जुएं, ये सब भी मर जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे और आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि डोंट वेट फॉर हेल्थ वर्कर टू कम टू योर हाउस, यू शुड एक्चुअली अप्रोच टू द हेल्थ वर्कर एंड ट्राई टू गेट द मेडिसिन एज सून एज पॉसिबल। इसको केवल चबा के खाना है, चबा के खाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चबा के खाना है। जो दूसरी आप देख रहे हैं बीच में सफेद कलर की, ये आइवरमेक्टिन की गोली है, इसको पानी के साथ लेना है। इसका नियम ये होता है, ये हाइट के हिसाब से होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है। 90 सेंटीमीटर के आमतौर पर उनकी हाइट होती है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को एक गोली, 120 से 140 तक दो गोली, 140 से 160 तीन गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको चार गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं ये DEC है, ये उम्र के हिसाब से दी जाती है, 2 साल से 5 साल के बच्चे को एक गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को दो गोली और 15 से बड़े को तीन गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगी, उसे घबराना नहीं है, वो उसके मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स, क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया, तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले, क्या होगा, उल्टा आपको आके काट ही लेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, और अब मैं ओपन करता हूँ डिस्कशन। अर्चना जी, ओवर टू यू।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: जब प्राइवेट में इलाज कराता है, जैसे आपने बताया सरकारी इलाज में तो सारी दवाइयां चेकअप सब कुछ फ्री होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर कोई अपना टीबी का इलाज कराने जाता है तो क्या वो डॉक्टर को पैसे देता है या वहां पर भी सरकार फ्री करा
3: देती है? बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराता है तो उसको प्राइवेट डॉक्टर के नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा। अच्छा। वो डॉक्टर उसकी जो जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम कराए या और भी कोई जांच कराए और जहां वो कराए, जहां के लिए सजेस्ट करे, तो वो जांच वो रोगी कराता है उसके हिसाब से। अगर डॉक्टर उचित समझता है, रोगी की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर कहता है कि ठीक है ये जांच आप सरकारी में करा लो, या जो हमारी एक टीम है जो प्राइवेट डॉक्टर से ही कोऑर्डिनेट करती है, सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी नियुक्त किया हुआ है, वो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनके यहाँ पे आए हुए रोगियों को एनरोल करते हैं हमारे सिस्टम में और उनको भी सपोर्ट देते हैं, उनके होम विजिट करते हैं, उनको 500 रुपये महीना दिलाने के लिए सारे काम करते हैं। तो निर्भर करता है उस डॉक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मरीज को देखता है।
2: लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप भी कहीं से हमको देख और सुन रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बताया कि आप सरकारी सिस्टम में अगर आएंगे तो सरकार आपका ध्यान भी रखेगी, आपको पैसे वगैरह भी देगी और आप प्रॉपर दवा खा रहे हैं या नहीं ये भी, जैसा कि सर ने बताया, वो टीम इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि इसकी जो सबसे अहम बात है कि दवाई एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए।

0: सर मैंने सुना कि 6 महीने तक या 9 महीने तक दो तरह से चलता, कैसे इलाज चलता है इसका?
1: वो पहले सिस्टम था जिसमें जो कोई नया रोगी आता था उसका इलाज 6 महीने चलता था, कुछ प्रतिशत लोगों में

0: एक बार किसी व्यक्ति का टीबी का इलाज सरकारी आप लोगों की देखरेख में इलाज हो गया तो क्या फिर भविष्य में उसको दोबारा टीबी हो सकती है या नहीं?
1: संभावना है, उसको कोई लापरवाही रखेगा, अगर अपने खान पीन में ध्यान नहीं रखेगा, अपनी इम्यूनिटी को ठीक नहीं रखेगा, तो चूंकि उस बीमारी ने उसका घर देख लिया, आप ऐसे समझिए, मैं देशी भाषा में समझाता हूँ, उसके फेफड़ों पे कुछ इम्पैक्ट डाला, उसके थोड़े बहुत फेफड़े भी इसमें से कमजोर हुए, तो 2-4% व्यक्तियों में ये संभावना है कि वो बीमारी उनको दोबारा से अपने चपेट में ले।
0: अब सर ये बताएं कि अगर किसी घर में कोई टीबी का मरीज ना चाहते हुए भी हो जाता है तो उनको परहेज किन किन चीजों के रखने, खाने पीने का भी बताएं, और जैसा कि आपने बताया कि बर्तन अलग करा देते हैं, कपड़े वगैरह अलग होते हैं, छोटे बच्चों से भी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, बताएं।
1: देखिए, अगर किसी भी परिवार में अगर कोई व्यक्ति फेफड़ों के टीबी का रोगी पाया जाता है तो सबसे ज्यादा ध्यान उसको रखना है कि हमेशा मास्क लगा के, कपड़ा लगा के रखे, जब भी खांसे छींके थूके, ये बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों से लिपटा चिपटी या प्यार करने की उन चीजों से बचे, वो खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, साथ रहने का कोई परहेज नहीं है, ध्यान रखे उसका कमरा हवादार हो, उसमें कोई रोशनदान हो, कोई एग्जॉस्ट फैन लगाओ, ताजी हवा का इस्तेमाल करे और जितना डिस्टेंस बना सके। वैसे तो जो औषधियां ये खाता है व्यक्ति, लगभग लगभग एक महीने के अंदर वो दवाएं उस रोग को जाके अंदर इतना निष्क्रिय कर देती हैं कि वो जो फैलने का डर था, वो फैलने का डर काफी हद तक कम हो जाता है।
0: अच्छा।
1: फिर भी ऐसा कोई परहेज नहीं है, लेकिन जितना डिस्टेंस आप रख सके, खासतौर से छोटे बच्चों से, खांसते छींकते थूकते हमेशा अपना मुंह बंद रखें, अगर थूकना भी हो तो किसी जो राख के अंदर ऐसे कोई बर्तन बना के रखें और उसको किसी प्रॉपर जगह पर डिस्ट्रॉय करें, ये सावधानी बहुत जरूरी है छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। संभावना को देखते हुए कि टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, सरकार ने ऐसा भी औषधियां उपलब्ध करानी शुरू करी है कि अगर किसी भी परिवार में किसी व्यक्ति को फेफड़े की टीबी है तो उसके परिवार में 5 साल से छोटे बच्चे प्लस सभी बड़े एडल्ट जितने भी हैं सबको सरकार 6 महीने तक दवा खिलाती है अलग से।
0: अच्छा।
1: टीबी की प्रॉपर दवा नहीं होती, पूरा वो कोर्स नहीं होता, मगर वो बचाव का एक कोर्स होता है, बच्चे और बड़े सारा वो कोर्स करते हैं 6 महीने का।
0: अच्छा।
1: ताकि वो बैक्टीरिया उस बच्चों और बड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके।
0: अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिसको बीमारी हो गई है टीबी की वो तो दवाएं खाएगा, लेकिन पूरा परिवार भी थोड़ी कम डोज वाली दवाई तो खानी है उसको।
1: वो बचाव के लिए एक कोर्स है, वो टेक्निकल पार्ट है, उस पर यहाँ बताने से कोई लाभ नहीं है, मगर वो सभी उस घर के रोगी जितने भी स्वस्थ हैं, अब तो सरकार ने नियम बनाया कि परिवार के जितने भी लोग हैं सबकी जांच होगी।
0: अच्छा।
1: सब लोग आइए अपनी जांच कराइए, जांच में 2 बातें होंगी, या तो वो सब ठीक होंगे या उनमें से कोई 1 या 2 व्यक्ति को टीबी का रोग हो सकता है।
0: जी।
1: तो जितने भी व्यक्ति टीबी के रोग ही निकलेंगे उन सबको तो टीबी की दवा चलेगी सेपरेटली, वो एक टीबी का मरीज है गया।
0: जी।
1: लेकिन जितने भी व्यक्ति ऐसे होंगे बच्चों से लेकर बड़े तक जिनमें कोई रोग नहीं पाया गया टीबी का, उन सबको फिर टीबी से बचाव की दवाई चलाई जाएंगी।

0: पूरे 6 महीने तक।
1: 6 महीने
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
2: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
5: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर हमको राणा जी ने इतनी काम की बात बताई है कि अगर आपके घर में टीबी का मरीज हो जाता है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, परहेज रखना है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे परिवार का भी एक ट्रीटमेंट चलता है, वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क होता है। सर, अगर कोई जानना चाहे टीबी के बारे में, ज्यादा जानकारी लेना चाहता, अपना इलाज कराना चाहता है, तो आप लोगों से या सरकारी सिस्टम से वो किस तरह से सहायता प्राप्त कर सकता है?
1: देखिए, वैसे तो पूरे मेरठ को डिसेंट्रलाइज करके सरकार ने हर व्यक्ति के नजदीक में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सब जगह टीबी की जांच की और इलाज की सुविधाएं शुरू की हुई है। बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, पैरेलल अस्पताल है, वरना कोई जहां भी रहता हो, वो मेरठ में शहर में रहता हो, वो मवाना, वो हस्तनापुर, वो भूड़बराल, वो सरदना, जहां रहता हो उसके ब्लॉक में, उसके आसपास में छोटे बड़े अस्पताल हैं। फिर भी अगर किसी को कोई जानकारी ऐसी लेनी हो तो मैं अपना नंबर यहां दोहराने जा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति निसंकोच टीबी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए मुझे फोन कर सकता है और जानकारी ले सकता है। मेरा नंबर है 9917717273। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं अपना नंबर 9917717273। तो कोई भी शंका होने पर, कोई भी जानकारी, किसी भी आवश्यकता में, कोई भी आपका श्रोता निसंकोच मुझे फोन कर सकता है।

0: आज के इस खास एपिसोड में आपने देखा और सुना कि टीबी का जो रोग है, सरकार की पूरी कोशिश है कि 2025 तक इसको पूरी तरह से हिंदुस्तान से, हमारे देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। आप भी अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। और जैसे कि सर ने हमको यहां पर अपना नंबर भी बता दिया है, तो अगर कभी आपको टीबी से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, इस रोग से संबंधित कोई दवाई कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इलाज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप इनको भी फोन कर सकते हैं। सर, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आपको कोई संदेश जनता के लिए?
1: बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी व्यक्ति सावधानी रखें, खासतौर से टीबी के रोगी अपने मुंह पर कपड़ा लगा के रखें, मास्क लगा के रखें, खांसते छींकते थूकते, और अपना इलाज पूरा करें।
0: जी,
1: इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप एक आदर्श नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं, आदर्श रोगी होने का फर्ज निभाते हैं। और बाकी सरकार और हम पूरा सिस्टम हमेशा इस रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी के साथ है। और मैं फिर से आजाद हिंद चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि इतना जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम उन्होंने लिया, अपना समय दिया, और मैं समझता हूँ कि जरूर इस जानकारी से हमारे शहर के, हमारे देश के बहुत लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए, सुनते रहिए सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के संग। जय हिंद।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
4: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
4: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
6: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में,
7: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
8: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

Will you dance with me?

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एंड हियर वी गो आरजे वंशी इन द स्टूडियो। हे हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे वंशी और लेकर हाजिर हूँ आपके वाला प्रोग्राम, नाम है जिसका सेहत सखी और संसार। गुड वाली मॉर्निंग, गुड वाली वाइब और वेडनेसडे मॉर्निंग है आज 9:11, 29 आज की तारीख 29 जुलाई। एंड गुड वाला फॉर्मूला ऑफ द डे आपका पहुंचा देती हूँ आज का। तो आज का जो फॉर्मूला है वो कहता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता बल्कि ये निरंतर मेहनत, अनुशासन और कभी हार ना मानने वाले जज्बे का परिणाम होता है। यानी कि जैसा कि आज की जो दुनिया है वो तेज रफ्तार वाली है, हर कोई रातों रात सफल होना चाहता तो है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हम अक्सर ऐसे रास्तों की तलाश करते हैं जहां हम कम मेहनत में अधिक परिणाम मिल जाने की आस लगाते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है जनाब। जल्दबाजी में हासिल की गई सफलता अक्सर अस्थाई होती है, यानी टेम्पररी होती है। स्थाई और मजबूत नींव केवल समय और धैर्य से ही बनती है, तो इसीलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। एक दिन में 10 घंटे पढ़ लेना या कुछ समय के लिए लेना या उतना सरदार नहीं है जितना कि हर दिन नियमित रूप से अगर आप कुछ घंटे अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ते हैं। यानी कि एक दिन में महीने भर की रोटी खा पाना संभव नहीं है, लेकिन आप महीने भर थोड़ा थोड़ा खा करके अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं। ये वही बात हो जाती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और यही

समय, आदतों और प्रायोरिटीज पर नियंत्रण रखना ही अनुशासन है। तो अनुशासन को मेंटेन करना, निरंतर मेहनत करना और कभी ना हार मानने वाली जो आपके अंदर जिद होती है, वही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है ना। तो चलिए, बहुत प्यारा सा गाना इज वेटिंग फॉर यू, अभी हम सुनेंगे ये गाना। बाकी आपको किसी गाने की फरमाइश करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं, नंबर 9639012111 हो जाता है मेरा। तो मीनवाइल हम इंजॉय करेंगे ये गाना और उसके बाद आई बी बैक टू यू। कहीं मत जाइए, यूं ही सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें लेकर हाजिर हूँ आपके पास। 9:26 हो गई हैं, 29 जुलाई आज की तारीख है और बुधवार आज का दिन है। बाकी आज तो मौसम ठीक ठाक सा है, लेकिन हाँ सुबह से ही काफ़ी गर्मी हो गई है ना। कल फिर भी मौसम काफ़ी सही था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, और शाम में तो आपको कूलर की आवश्यकता नहीं पड़ी, पंखे से ही काम चल गया था। बाकी चलिए अभी ना आपको बता देती हूँ कि आज का दिन क्यों हो जाता है खास और आज के दिन का इतिहास भी क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि आज क्योंकि है 29 जुलाई और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में, यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाघ केवल एक वन्य जीव नहीं, बल्कि हमारे जंगलों के स्वस्थ और इकोसिस्टम के संतुलन का प्रतीक है। तो इसीलिए उनकी अहमियत को जानने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसी के साथ आपको बता दूं कि इसे ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है और इसका उद्देश्य वही जैसा मैंने आपको बताया, लोगों को और सरकारों और संरक्षण संगठन जो होते हैं उनको बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने और उनके अवैध शिकार यानी के पोचिंग जो होती है तथा अवैध व्यापार के खिलाफ जागरूक करना होता है। इसको वर्ष 2010 में शुरू किया गया। इस दिवस की शुरुआत रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर सबमिट से की गई थी, ये बात है साल 2010 की। वहीं इस सम्मेलन में दुनिया के 13 बाघ रेंज वाले देशों ने मिलकर एक ऐतिहासिक संकल्प लिया था जिसे TX2 नाम भी दिया। इसका उद्देश्य 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करना था। अब उसका क्या रिजल्ट रहा इसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन आपको इस बारे में पता था आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, या आपके लिए आज का दिन क्यों हो जाता है खास ये भी आप मुझसे ज़रूर साझा कर सकते हैं ऑन माई नंबर 9639012111। मीनवाइल मैं बहुत ही प्यारा सा गाना हमराज मूवी का आपके साथ साझा करूंगी, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट विद मी आर जीवन शी।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही

0: audio voice, then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: क्या बात है बबलू भैया, एक और नई गाड़ी?
2: हाँ भैया, बस ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन आपको पता है कि हमारे मोहल्ले में अब टोटल 23 गाड़ियाँ हो चुकी हैं, है ना गर्व की बात?
1: गर्व की बात? अधिक गाड़ियों का मतलब है अधिक सड़कों का निर्माण करने की आवश्यकता, जिससे हवा, भूमि और जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, जो कि हमारी और प्रकृति दोनों की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
2: बात तो सही है राहुल भैया, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं?
1: हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं।
3: क्या आप जानते हैं, हर साल साइकिल के उपयोग से लगभग 10 से 15 मिलियन टन ऑक्सीजन बचाई जा सकती है। साइकिल चलाना न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है, बल्कि हमारी ग्रह पृथ्वी के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। 5 किलोमीटर दूरी तक के सभी कामकाजों को साइकिल के द्वारा करने की कोशिश करें। देश को प्रदूषण से बचाने में बिल्कुल भी शर्म ना करें। स्टॉपिंग पॉल्यूशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन।
2: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों, बहुत सारी बातें फिर से लेकर लौटी हूँ आपके पास. 9:50 हो गई हैं, 29 आज की तारीख है और साथ ही साथ प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार मेरे यानी आरजी वंशी के साथ. एंड ब्रेक पर जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट कि क्योंकि आज है 29 जुलाई, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस. और ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन अगर बात की जाए कि इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस क्या हो जाती है अगर हम बाघों की बात करें या टाइगर्स की बात करें, तो बता दूं आपको कि बाघ पर्यावरण के शीर्ष शिकारी यानी के एपेक्स प्रीडेटर में आते हैं, जो कि फूड चेन के संतुलन को बनाए रखने में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं. और वहीं आपको बता दूं कि शाकाहारी जीवों पर इनका नियंत्रण रहता है. बाघ, हिरण और अन्य जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी संख्या को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं, जिससे जंगलों में वनस्पति और हरियाली अत्यधिक नष्ट होने से बचती है. वहीं आपको बता दूं कि बाघों की मौजूदगी अप्रत्यक्ष रूप से पूरे जंगल के स्वास्थ्य और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखती है. वहीं अगर वर्तमान के बारे में बात करें, करंट स्टेटस के बारे में बात करें या चैलेंजेस के बारे में बात करें, तो बाघों की जो स्किन होती हैं, हड्डियां होती हैं या उनके बाकी के बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग के कारण इनका अवैध शिकार एक बड़ी चुनौती बन चुका है और बना भी हुआ है. साथ ही साथ आपको बता दूं कि हैबिटेट लॉस, जैसे कि तेज़ी से वनों की कटाई चल रही है, शहरीकरण हो रहा है या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो

वैसे टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया की बात करें, भारत की स्थिति क्या है, तो इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर भारत सरकार ने अप्रैल 1973 में टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, जिसने देश में बाघों की संख्या बढ़ाने में ऐतिहासिक सफलता भी हासिल की थी। और फिलहाल की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो आज के टाइम में भारत में कई टाइगर रिजर्व्स, जैसे कि हम बात करें जिम कॉर्बेट की, कान्हा की, या रणथंभौर जैसे कुछ रिजर्व्स हैं जो सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं, जो वैज्ञानिक तरीकों से बाघों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जिससे कि हम टाइगर्स को कंजर्व करने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। बाकी और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूँगी सारी की सारी, बट मीन वाइल इंजॉय करेंगे गाना फ्रॉम द मूवी खुदा गवाह। बहुत ही प्यारा सा गाना है, चलिए इस गाने पर।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First। तो दोस्तों ढेर सारी बातें लेकर हाजिर हूँ। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, 10:09 हो गए हैं। जख्म मूवी का भी हमने गाना एंजॉय किया। बाकी आज का दिन और भी ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि जनाब आज है गुरु पूर्णिमा। यस, अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले गुरु के प्रति

आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी जिसे भी आप अपने जीवन में गुरु मानते हैं, आइडियल मानते हैं, आज उनको ज़रूर धन्यवाद करें। इसी के साथ आपको बता दूं कि जो गुरु पूर्णिमा है वो

इस पावन दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये दिन महान ऋषि महर्षि वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। वहीं आपको बता दूं कि वेद व्यास जी ने ही चारों वेदों, जिनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, का संकलन किया था। साथ ही महाभारत, ब्रह्म सूत्र और 18 महापुराणों की रचना भी की थी। उन्हें मानव जाति का प्रथम गुरु माना जाता है और इसीलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी के साथ आपको बता दूं, योग परंपरा और सनातन संस्कृति के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा का दिन ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन होता है जब भगवान शिव ने योगिक विज्ञान का प्रसार शुरू किया था। इस दिन शिवजी ने सप्त ऋषियों यानी 7 ऋषियों को आदि गुरु के रूप में योग का पहला ज्ञान दिया था, इसीलिए उन्हें आदि योगी और प्रथम गुरु भी कहा जाता है। तो ये कुछ मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है गुरु पूर्णिमा से संबंधित। अब इम्पोर्टेंस की बात करें तो जनाब, जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि और उनकी महत्वता भी सर्वोपरि। बाकी आप बताइए कि आपके जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति रहा जिनको आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं और जिनकी तरह बनना चाहते हैं? ऑन माई नंबर 9639012111। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी में या आपके जीवन में आपके सच्चे गुरु और पहले गुरु आपके माता पिता ही होते हैं। तो आज सबसे पहले उनका धन्यवाद जरूर करें, उनको प्रणाम जरूर करें। तो चलिए उन्हीं के नाम ये गाना हम सुनते हैं साथ में, ओनली ऑन आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे हो रही हैं। फिलहाल हमने एक गाना एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी माँ, जो कि 1991 में आई थी। और अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो बहुत ही इमोशनल मूवी है और बहुत ही मार्मिक इसकी कहानी है। अगर आप देखना चाहें तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। बाकी अभी ना वी वर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा और आज के दिन की काफ़ी मान्यता हो जाती है। और आज का ही वो दिन है जब हम अपने गुरुजनों को, बड़े लोगों को जिनसे हमने कुछ सीखा है, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अहमियत देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनका बार बार धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, क्योंकि भारत की बात करें या भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति में गुरु को ना भगवान से भी ऊँचा दर्जा दिया।

चीर कर ज्ञान रूपी प्रकाश का मार्ग दिखाता है। और ये दिन केवल आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति ही नहीं, बल्कि उन सभी शिक्षकों, माता पिता और आपके मार्गदर्शकों यानी मेंटर्स के प्रति

खास बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। वैसे आज के दिन ना पीले रंग का अधिक महत्व होता है, पीले या सफेद वस्त्र धारण कर

करेगा। वैसे आज के दिन ना दान पुण्य करने का भी काफी एक विशेषता बताई है कि इस दिन ना जरूरतमंदों को या फिर स्टूडेंट्स को पुस्तकें देने से या पेन देने से या कुछ भी ऐसी स्टेशनरी देने से या साथ ही साथ अन्न या वस्त्र का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो ये तो हो जाती है भारतीय संस्कृति की खूबसूरती, है ना। चलिए फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ। 10:32 हो गए हैं एज पर माई स्टूडियो क्लॉक और अभी हम इंजॉय करेंगे।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति।

0: नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में,
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे हो रही हैं और इसी के साथ वी वर टॉकिंग अबाउट कि आज का दिन क्यों ही हो जाता है खास, क्योंकि आज है तारीख 29 जुलाई और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा भी, और साथ ही साथ आज हमने इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में बात की क्योंकि आज के दिन ही उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत के लिए ये दिन और भी ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि आज ही के दिन भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दिन माना जाता है। ये बात मैं बता रही हूँ आपको मॉस्को ओलंपिक्स गोल्ड की, जो कि 1980 से रिलेटेड है। भारतीय खेल इतिहास में आज का दिन बहुत गौरवशाली इसलिए भी हो जाता है क्योंकि साल 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया था और ओलंपिक इतिहास में भारत का ये अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक था, जो भारतीय हॉकी के स्वर्णिम युग की एक महान याद हमें दिलाता है। इसी के साथ आपको बता दूं कि नासा की स्थापना 1958 में आज ही के दिन हुई थी। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम नासा है, उसकी आज ऑफिशियल इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और आज ही का वो दिन है जब ऑफिशियली हमें एयर इंडिया का नाम सुनने को मिला था। इसी के साथ आपको बता दूं कि आज हिंदी सिनेमा के लिए भी काफ़ी स्पेशल डे है क्योंकि आज ना हमारे हिंदी सिनेमा के मुन्ना भाई MBBS का है बर्थडे, यानी कि हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता संजय दत्त जी का जन्मदिन है और इनका जन्म मुंबई में हुआ था, तो इसलिए भी कुछ खास हो जाता है आज का दिन। वहीं और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है या क्यों है ये आज का दिन आपके लिए खास, आप भी मुझे ज़रूर बता सकते हैं। बाकी मेरिट की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि सावन शुरू होने वाला है और कांवड़ यात्रा के लिए काफ़ी सारे जो यात्री हैं वो निकल चुके हैं और इस संदर्भ में सड़कों पर अब थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी से आपको चलना होगा और चलना भी चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा से बिल्कुल समझौता ना करें। साथ ही साथ अगर ज़रूरी नहीं है कहीं जाना तो आप बिल्कुल जाना प्रेफर ना करें क्योंकि इससे असुविधा आपको भी हो सकती है और हो सकता है अगले व्यक्ति को भी हो। वन वे बहुत जल्द हो जाएगा तो ऐसे में अगर आपको कोई ज़रूरी काम का निपटारा करना है तो उसे निपटा लीजिए और न जाने कब सड़कें बंद हो जाएं, है ना। चलिए फिलहाल लज्जा मूवी का ये प्यारा सा गाना आपके लिए।

0: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First। और दोस्तों, ढेर सारी बातें तो आपसे हो ही रही हैं। प्रोग्राम चल रहा है सेहत, सखी और संसार। और फिलहाल आपको बता दूं कि हमारे साथ हमारे लिसनर्स जुड़ गए हैं सहारनपुर से, सैयद मशरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम और सद्दाम। ये हमेशा हमसे

मज़े लेने वाले हमेशा अपने ही होते हैं, कुछ ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस मुझसे साझा कर रही हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपनी बात हम तक पहुंचाई, लेकिन फ़िलहाल हम भी आपका गाना आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी कोई गाना रिक्वेस्ट करना है या फिर किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है 9639012111, और इस नंबर पर चाहे तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं या फिर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स के माध्यम से भी हमसे। आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम, मेटा, एक्स और यूट्यूब पर, चारों प्लेटफॉर्म्स पर हम आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। और 5

जाइए अपने प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए आज़ाद हिंद रेडियो नामक ऐप, जहां पर आप हमसे सीधे सीधे कनेक्ट हो पाएंगे और अगर कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी जाना चाहेंगे तो भी आप हमसे जुड़े रहेंगे। फिलहाल चलिए जोड़ती हूँ आपको इस गाने से, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से, और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, कभी कभी ना आपको कुछ ऐसा किस्सा याद आ जाता है कि आपको मन ही मन हंसी आ जाती है, और फिर आपके जो आजू बाजू लोग होते हैं वो आपको देख करके आपको ये बोलते हैं कि पहले तो ये बताओ कि क्यों मुस्कुरा रही हो, हम भी हंसना चाहते हैं साथ में। और दूसरा ये कि आप मन ही मन बस खुश हो रहे होते हैं, और कभी कभी ना अपनी छोटी सी लापरवाही के विषय में भी आप सोचते रहते हैं कि काश मैंने ये ना किया होता, ये छोटा सा स्टेप मतलब बेवकूफ़ी भरा हो जाता है ना। आपके साथ भी कभी कभी ना ऐसी कंडीशंस बन जाती होंगी जब आप अपनी छोटी सी गलती के ऊपर हंस रहे होते हैं कि आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ कोई काम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ना स्पेशली

ओवर सचेत रहते हैं कि उस सचेत रहने के प्रोसीजर में आप वही गलती कर देते हैं जिसके लिए आपको बोला गया होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर आप मुझसे रिलेटेबल फाइंड कर रही हैं तो लेट मी नो ऑन माई नंबर 9639012111। मीनवाइल चलिए, बहुत ही प्यारा सा गाना तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन अभी ना मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ जो कि पीढ़ियों से रिलेटेड है। सी, टाइम बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारी संस्कृति बदल रही है, सोशल चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके बेसिस पर ना मानव इतिहास की जो जनरेशन है उनको अलग अलग नाम से क्लासिफाई कर दिया है। अब कौन सी जनरेशन किस नाम से जानी जाती है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और बताने वाली हूँ आपको कि आप आखिर कौन सी जनरेशन की हैं।

बाकी अभी तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने ही वाली हूँ, तो अब आप अपने आप से ही इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं कि आखिर आप कौन से जनरेशन में आते हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये इंजॉय करेंगे। और क्योंकि ये गाना थोड़ा सा इमोशनल है तो आप थोड़े इमोशनल भी हो सकते हैं, लेकिन ये गाना बड़ा ज़बरदस्त है। चलिए इस गाने को हम सुनेंगे साथ में ओनली ऑन आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
3: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेल वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और इसी के साथ प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार मेरे यानी आरजे वंशी के साथ। कुछ बातें आपसे करती हूँ इस प्रोग्राम में जो हो जाती है संसार से रिलेटेड, तो वहीं कुछ बातें आपसे करती हूँ जो होती है आपकी सेहत से रिलेटेड, वहीं कुछ बातें होती है जो होती है हमारी सखियों से, और कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आपको बताती हूँ जो आपकी लाइफ को और भी ज्यादा सिंपल और सॉर्टेड कर देता है ना। तो कुछ ऐसे ही टिप्स आपसे साझा करती हूँ। वहीं अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है हमारा 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, बिल्कुल लाइव आपसे बातें होती हैं। तो इस दौरान आप फरमाइशें भी कर सकते हैं किसी गाने की, और साथ ही साथ किसी गाने को आपको किसी को डेडिकेट करना है तो वो भी आप जरूर कर सकते हैं। कुछ अच्छा लिखना जानते हैं तो वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर कोई और भी कलाकार है तो इसके बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, और हमें पसंद आएगा कि अगर आप अपनी कला हमसे साझा करेंगे। वहीं आपको बता दूं कि अब आपका जो रेडियो है आजाद हिंद रेडियो, वो बहुत सारे सोशल हैंडल्स पर मौजूद है, यानी कि आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और साथ ही साथ आप जा सकते हैं मेटा पर भी, जिसको आप फेसबुक के नाम से भी जाना करते हैं। वहीं आप जा सकते हैं एक्स पर, तो आप जा सकते हैं यूट्यूब पर भी। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको दुनिया के किसी भी कोने में से मिल सकते हैं, वो है आपका प्ले स्टोर। आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, जिसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। बच्चा तलक भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, और हमसे जुड़ जाइए और यूं ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। फिलहाल आपको जोड़ूंगी इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों।

0: आरजे वंशी के साथ।
1: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें कर रही हूँ आपसे। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, मेरे यानी आरजे वंशी के साथ। कुछ ऐसे टिप्स आपको बता रही हूँ जिसको अगर आप अपनाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो काफी हद तक इम्प्रूव होने वाली है और आप रहने वाले हैं टेंशन फ्री। क्योंकि स्पेशली बात करें महिलाओं की, लड़कियों की, तो जब उनकी स्किन या फेस पर कुछ हो जाता है, दाग या धब्बा से, तो इतनी ज्यादा पैनिक हो जाती है कि वो खाना पीना तक भी छोड़ देती है और हर वक्त उनका ध्यान सिर्फ उसी पर रहता है। तो अपना ध्यान इन चीजों से हटाइए और प्रोडक्टिव चीजों में जरूर लगाइए। फिलहाल कुछ कुछ टिप्स देकर आपको टेंशन फ्री करती रहूंगी, तो इसलिए सुनते रहिए ये आपका अपना वाला शो जिसका नाम है सेहत सखी और संसार। फिलहाल आपको बता दूं कि जैसे मॉनसून का मौसम होता है, जब बारिश हो रखी होती है, तो कुछ ऐसे जरूरी नियम हैं जो आपको जरूर अपनाने चाहिए ताकि आपकी जो स्किन है वो किसी भी तरीके से नुकसानग्रस्त ना हो, यानी कि क्षतिग्रस्त ना हो। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको भारी मेकअप से बचना है, क्योंकि जब भी मौसम ऐसा होता है बारिश वाला, तो उसमें लिक्विड फाउंडेशन या भारी क्रीम मेकअप जो है आपको उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पसीने के साथ मिक्स होकर के पोर्स को ब्लॉक कर देता है। और नो मेकअप लुक या सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो पोर्स हैं वो ब्लॉक होने से बच रहे। वहीं आपको बता दूं कि जब भी मॉनसून होती है, जब बारिश का मौसम होता है, तो फंगल इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे बचाव करने के लिए आप क्या करें, अगर आप बारिश में भीग जाती हैं तो तुरंत अपने चेहरे और शरीर को साफ पानी से धोएं और उसको सुखा लें। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ज्यादा देर तक अपने शरीर को गीला ना रखें, क्योंकि गीली त्वचा जो होती है उस पर फंगस बहुत तेजी के साथ पनपती है और आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, आपको खुजली का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दूं कि चाय कॉफी की प्लेस पर आप दिन में 8 से 10 गिलास अगर पानी पियेंगे, या फिर आप नारियल पानी भी ऑप्ट कर सकते हैं, इसके अलावा नींबू पानी भी पी सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके शरीर के टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं और आपकी स्किन और भी ज्यादा चमकदार और ग्लोइंग हो जाती है। वेल, और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी की सारी। लेकिन अगर आपको भी मुझसे कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा नंबर है मेरा 9639012111। मीनवाइल एंजॉय करेंगे अपकमिंग गाना और उसके बाद आई बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर,
1: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।
4: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो, या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
6: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। प्रिय अस्पताल

0: छोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
3: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
5: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, मेरे यानी आरजे वंशी के साथ ढेर सारी बातें हमने की। और इसी के साथ दोस्तों आपसे कहना चाहूंगे कि क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है तो आपको कुछ कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बारिश की जो बूंदे हैं वो आपके तन मन को भिगोती है तो आपको बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब ये पानी आपकी गलियों और गड्ढों में रुकता है तो परेशानी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर हैं वो उसमें पनपते हैं और अपना घर बना लेते हैं। तो इस मॉनसून ये प्रण कीजिए कि आप जब भी आपको टाइम मिलता है या वीकेंड पर अपने घर के कूलर और जो गमले होते हैं उनकी जांच जरूर करें, साथ ही साथ छतों पर जाकर एक बार जरूर देखें और पानी को रुकने ना दें, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर पानी भरा रहा तो बीमारी पनप सकती है और आपको इसका जो है भरपाई करनी पड़ सकती है। वहीं आपको बता दूं कि आप बीमारियों से तभी दूर रहेंगे अगर आप इस मॉनसून पानी उबाल कर पीते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को हार्ड वाटर पीना बड़ा ही पसंद होता है, यानी कि जो पानी डायरेक्ट आपके ट्यूबवेल से आ रखा होता है वो पानी पीने में बेशक थोड़ा रिफ्रेशिंग लगता है और ज्यादा पिया भी जाता है, लेकिन अगर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और इस मॉनसून आपको किसी भी प्रकार की बीमारी को अपने पास नहीं लाना है तो याद रखें कि आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को पानी उबाल कर दें और अपने आप को सुरक्षित रखें। वहीं और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी की सारी, लेकिन आज नहीं, अपने अगले प्रोग्राम में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और साथ ही साथ इस मॉनसून एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम एक पौधा जरूर लगाएं और अपने धरती माता को उससे सुशोभित करें, ताकि ये पौधा हमें ऑक्सीजन तो दे ही, साथ ही साथ जो भी हमारी बाढ़ जैसी आपदाएं होती हैं उनको भी रोकने में, थामने में हमारी मदद कर सके। फिलहाल ये गाना आपकी जरूर मदद करेगा जाते जाते जो आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। तो चलिए एंजॉय कीजिए ये गाना और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। To no more call now 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभा आरती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी

0: इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जय हिंद। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और यह है आपका अपना कार्यक्रम जय जवान जय किसान। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कि इस मौसम में हमें अपनी फसलों में किन किन चीजों का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं इस चबरदासुर रागनी के साथ।

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: शुभार्थी आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुंदरा दे से कह दिया। तो देखिए सुंदरा दे तीन वचनों में गुरु गोरखनाथ को बांधकर उनके प्यारे शिष्य पूरन मल को मांग लेती है। मेरे मेहरबानों, क्योंकि तिरवाचा थे गुरु गोरखनाथ, वचन तो उनको देना ही पड़ता, लेकिन साथियों उनके दिल में बहुत भारी दर्द हुआ। मेरे मेहरबानों, उन्होंने पूरन मल को समझाया। जब सुंदरादे के हाथों में पूरन मल को सौंप दिया, बेटे पूरन मल तू मेरा शिष्य है, अगर वाकई तैने मेरी शिक्षा को ग्रहण किया है तो तुझे वो परिणाम दिखाना पड़ेगा। गुरु की वाणी कर्म योग का ध्यान रखिए बेटा, जति सती की तरह सदा सम्मान रखिए बेटा, शीतलता ना छोड़े चंदन कभी नागों की करवट में, और न्यूत में भी जानू सू तो फूल बुरा मर घट में, संकट में भी आ सदा ईमान रखिए बेटा, एक जति सती की तरह सदा सम्मान रखिए बेटा। मेरे मेहरबानो समझान लगे के बेटे तुझे किस तरह से एक समंदर को पार करना है, न उसमें कोई नाव है, न उसमें कोई घाट है और न कोई पुल बना हुआ है। बेटे अगर तुझे उससे पार होना है तो केवल मेरी शिक्षा से, मेरी शिक्षा पूर्ण कलंकित न हो जाए। मैंने तुझे वचनों में दे तो दिया, लेकिन मेरा कलेजा दहल रहा है। मेरे दोस्तों पूरन मल को भेज दिया, पूरन मल सुंदरादे के साथ चल देता है। तो देखिए सुंदरादे तो मन मुग्ध थी कि आज मैंने भारी तपस्या के बाद, भारी परिश्रम के बाद उस चीज को पा लिया जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे मेहरबानों, सुंदरादे पूरन मल को अपने राजमहल में और छत्तर सारी पर ले जाती है। देखिए पूरन मल तो रमता योगी। दोस्तों कामदेव के वश में, कामुक भावनाओं में लीन घिरी हुई सुंदरादे जब पूरन मल के धर्म पर झपटना चाहती है, साथियों अपनी योग विद्या से पूरन मल गायब हो गया। मेरे मेहरबानों, सुंदरादे जहां देखती है वहां पूरन मल, जिस दशा में उसकी नजर जाती है उसे पूरन मल की सूरत दिखाई देती है। छत्तर सारी से नीचे गिर के अपनी आत्महत्या कर लेती है, और वो जोगी, वो पूरन मल अपने गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच गया। कहने लगे गुरु गोरखनाथ, बेटे पूरन तेरे जैसे शिष्य से मुझे यही आशा थी, मुझे आत्मविश्वास था कि तू मेरे धर्म को कलंकित नहीं करेगा और धर्म को बचा दिया। बेटे तेरे माथे पर एक कलंक का टीका लगा हुआ है, एक दाग बाकी है, उस दाग को और मिटा दे। मेरे मेहरबानों, भला कैसे कहते हैं कि तू सियालकोट चला जा, तेरी मौसी न्यूनादे ने तुझ पर दोष लगाया है, लेकिन दोषी वो न्यूनादे थी। मेरे मेहरबानों, बाग में पहुंच गया पूरन मल, और कैसे आवाई मस्ती है उस चमत्कार की सुनिए रागिनी के अंदर।
1: वास्तु कृष्णा के साथ
2: सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: और सनातन के रंग सुभारती आजाद हिंद रेडियो के संग जय हिंद।
1: भवं भवानी सहितं नमामि
0: वास्तु कृष्णा के साथ।
2: सौ अच्छी चीजें हो जाए लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
3: जो आया है वो जाएगा भी।
4: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
2: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
0: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया हर सुबह सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
2: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
5: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। दोस्तों, बरसात का ये मौसम है, कहीं पर हो रही है कहीं पर नहीं होती, लेकिन फिर भी यदा कदा तकरीबन हर खेत में बारिश का पानी पहुंच ही जाता है, यानी हर जगह बारिश गाहे बगाहे एक दिन दो दिन के गैप पर हो ही जाती है। तो इस मौसम में हमें दो बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, जो कीड़े मकोड़े या कीट पतंगे या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जो हमारी फसलों में लग जाती हैं, खासतौर से हमारी जो धान की फसल है या गन्ने की फसल है, इन दोनों फसलों में हम लोग बहुत ज्यादा स्प्रे करते हैं। लेकिन अगर आपको मौसम दिख रहा हो कि अगले तकरीबन 4 से 5 घंटे में बारिश हो सकती है, तो स्प्रे नहीं करना, क्योंकि जैसे ही बारिश हो जाएगी आपकी स्प्रे टोटल वेस्ट हो जाएगी, उसका कोई भी लाभ आपकी फसल को नहीं होगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि तमाम दवाइयां या जो रासायनिक खाद होते हैं, ये जो उर्वरक होते हैं या जितने भी केमिकल्स जो हम अपनी खेती में किसी भी रूप में स्प्रे करते हैं, वो धुल जाते हैं, महंगा होता है, नुकसान होने की संभावना होती है, हमें बार बार ये ट्रीटमेंट करने पड़ सकते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, जब आपको दिख रहा हो कि बारिश कभी भी हो सकती है, ऐसे में आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर स्प्रे का एक रूल होता है कि स्प्रे होने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे की कड़क धूप हमारे खेत को लगनी चाहिए, तभी उसका असर होता है। आगे बातें कुछ हो रहे, फिलहाल आपके लिए देसी गाना।
1: मुड्डे तने बेरा है, इस कुएं पे लुगाई पानी भरनावे है, इस कुएं पे आदमिया का जब कोई काम है नहीं तो तू क्यों करा गया अड़े?
2: अरे हम तो साधु हैं, फकीर हैं, हमसे क्यों डरती हो तुम?
1: तेरे तो कौन ही डरती, तेरे रूप ने देख के डर रही सू, तेरा साथ द्वारा तो कोई ढंग लगता ही नहीं। जवान उम्र, गोरा रंग, चढ़ती जवानी, चेहरे पे लाली कटीली आंख, मन तो ऐसा लागे से तेरे क्या है की खटक लाग रही से, इससे करके तो तू यो भगवा बाणा पैर के आया से।
2: अरे कन्या, साधु बनता है तो सिर्फ 3 कारणों से बनता है।
1: 3 कारण? 3 कारण कौन से बाबा?
2: 3 कारण, लटक, झटक या खटक।
1: मैं कहूँ थी तू फकीर तो हो ही नहीं सकता, फकीर का तो दिमाग साधारण सा होया करे, भक्ति में ध्यान रहा करे, तेरा दिमाग तो फकीर आला है को ना, बहुत तेज चले तेरा दिमाग, तेरी नजरे मने कुछ ठीक नहीं लगती, चला जा अड़े तना थे गड़बड़ हो जाएगी।

0: और सनातन के रंग सुभारती आजाद हिंद रेडियो के संग जय हिंद।
1: भवम भवानी सहितम नमामि
0: वास्तु कृष्णा के साथ।
2: सौ अच्छी चीजें हो जाएं, लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
3: जो आया है वो जाएगा भी।
4: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
2: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
0: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया हर सुबह सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
2: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
5: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण इंसान आस्तिक या नास्तिक होकर दे सकता है, पर भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करता।
1: भगवान की भक्ति और शक्ति को जानिए।
2: जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का।
3: वास्तु कृष्णा के साथ हर सुबह दिन की शुरुआत जीवन को रूपांतरित कर देने वाली बातें सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर सुबह 4 बजे से 8 बजे तक भक्ति और भजन रोजाना सुनना ना भूलिए। सुनते रहिए मेरठ का नंबर 1 रेडियो, सुभारती रेडियो।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ
4: रख विश्वास, तू है शिव का दा...

0: थैंक यू मैम, थैंक यू।
1: जय हिंद दोस्तों, ये मेरठ का नंबर वन सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम है। और जैसे कि पता है आपको कि आज है 25 जुलाई और दिन है शनिवार का, यानी कल छुट्टी का दिन है। पर किसानों के लिए कोई दिन छुट्टी का दिन नहीं होता, हमें हर रोज मेहनत करनी होती है। बारिश हो तब भी, ठंड हो तब भी, गर्मी हो तब भी, बारिश के मौसम में किसानों की मेहनत थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है, वो भी तब जब हमने गन्ने की फसल बो रखी हो। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में गन्ने की फसल है और पेड़ी की फसल है, यानी कि दूसरे साल वाली फसल है, तो ऐसे में आपको समय रहते अपनी फसल को बांध लेना चाहिए। गन्ने की बंधाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि किसी भी वजह से तेज हवा, तेज बारिश की वजह से अगर फसल एक बार ढह जाती है, बहुत सारी बीमारियां उसमें लगती हैं, जंगली जानवर वगैरह सब उसको खाते हैं, कीड़े भी उसमें लग जाते हैं, फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, वजन कम हो जाता है गन्ने का। इसीलिए गन्ने की बंधाई बहुत ज्यादा जरूरी है। गन्ने की बंधाई करने खुद जा रहे हैं या मजदूरी पर करवा रहे हैं, दोनों ही विषय में आपको दो बात बहुत ज्यादा याद रखनी है। पहली, गन्ने की जो पेड़ी की फसल होती है ये बहुत बड़ी होती है, इसके अंदर जंगली जानवर, कीट पतंगों के अलावा कई बार सांप या जहरीले ऐसे जिनावर वगैरह होते हैं, साथ ही साथ मधुमक्खी या ततैया वगैरह के छत्ते होते हैं, जो कई बार चोटिल या घायल कर देते हैं, काफी पीड़ादायक होता है ऐसा। इसीलिए जब भी कभी गन्ने की फसल की बंधाई के लिए खेत में पहुंचे, आपके पैरों में जूते लंबे वाले होने चाहिए, ताकि आपके पैरों का बचाव किया जा सके। आप एक हेलमेट ले सकते हैं, या वो एक जाली नुमा एक हेलमेट जैसा मास्क आता है किसानों के लिए, वो भी लगा सकते हैं, ताकि ये ततैया मधुमक्खी इत्यादि आपके ऊपर हमला ना कर सकें। अपने हाथों का भी ध्यान रखें, अपने पूरे जो कपड़े होते हैं, पूरे जो बाजूबंद कपड़े होते हैं, इस प्रकार के आपको कपड़े पहनने, क्योंकि गन्ने की पत्तियों में क्या होता है आजकल, काफी एक तो केमिकल के स्प्रे होते रहते हैं, जब कट लगता है शरीर के किसी भी हिस्से पर तो जहर अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से स्किन एलर्जीज हो सकती है, स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती हैं, फिर लंबे टाइम तक इलाज कराना पड़ता है। अब खेती का तरीका भी बदल गया है और बचाव के रीजन भी बदल गए हैं, न सिर्फ चोटिल होने का खतरा रहता है, हमें कई मामलों में खुद का ध्यान भी रखना पड़ता है। अगर कोई खास वजह है आपके पास गन्ने की फसल को लेकर, कुछ बताना चाहते हैं मेरे साथ में, डिस्कस करना चाहते हैं, तो नंबर है 9639012111। मौसम बहुत ही खूबसूरत है, अगर आपके एरिया में, आपके खेत पर, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में बारिश हो रही है तो मुझे बताइएगा जरूर 9639012111 पर। ये चावड़ धसुरागिनी आप सभी के लिए।

0: भक्ति और सनातन के रंग, सुभारती आजाद हिंद रेडियो के संग। जय हिंद।
1: भवम भवानी सहितम नमामि
0: वास्तु कृष्णा के साथ।
2: सौ अच्छी चीजें हो जाए लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
3: जो आया है वो जाएगा भी।
4: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
2: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
0: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया, हर सुबह सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
2: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
5: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
6: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।

गौरा के जरा मेरे से सुना ले भाई।

अपना जमींदार। अगर भाई का कुछ काम हो जा के खेत का, आ जा हल छोड़ के ने और पाछे तना दिया जा, कोई नहीं बेरा बिचारा ने। लोग बागा दे मेरा चंदर फिर पानी देन चले, अरो क्या का पाला पड़े को का बीच नदी का बड़ के ने बिचारा मोरी में बाइकी में फंस जा, काटना पड़े जरूर। कैसे बताया भला,

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए।
1: किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, मैं हूं वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अपने विचार हमारे साथ में आप शेयर किया करें। अगर आपकी फसलों में कोई समस्या है, कोई दिक्कत आपको नजर आती है तो आप हमारे पास फोन कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं 9639012111 पर। उससे क्या होगा कि आपकी जो भी समस्या है हम अपने एक्सपर्ट, हमारे विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करके आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारी गन्ने की फसल आजकल खड़ी हुई है। ज्यादातर किसान भाइयों ने अपनी पेड़ी की फसल, जो गन्ने की दूसरे साल वाली फसल होती है, उसकी बंधाई कर ली है। कुछ लोग कर रहे हैं। मैं जब गांव में जाता हूं, विजिट करता हूं हमारे किसान भाइयों के पास, तो मैं देख रहा हूं किसान भाई सुबह से लेकर शाम तक गन्ने की बंधाई में लगे हुए हैं। जो बच गए हैं वो जिनकी स्प्रे नहीं हुई अभी तक, वो स्प्रे कर रहे हैं। एक बेल नामक बीमारी होती है हमारे खेतों में। ये बेल को कितना भी उखाड़ो, ये खरपतवार होता है, कितना भी उखाड़ो वो बार बार उग आती है। रीजन होता है क्योंकि उसके जो बीज होते हैं हमारे खेत में रह जाते हैं और वो हर साल बार बार बार बार किसानों को परेशान करती है। तो कोशिश करनी है हमको पहले तो ये कि हम बेल को उखाड़कर खेत से बाहर फेंक दें, लेकिन जो छोटी बेल नजर आती है उसके ऊपर आपको स्प्रे जरूर कर देनी चाहिए। इसमें जो चौड़े पत्ते वाली घास होती है, खरपतवार होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं और ये जो बेल होती है, क्योंकि गन्ने की फसल हो या कोई फसल हो, सबको बर्बाद करती है, सबको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। गन्ने का वजन कम हो जाता है, गन्ने की फसल ढह जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। ये एक ऐसी बेल होती है जिसके ऊपर छोटी कचरिया टाइप के फल लगते हैं, ये किसी पेड़ पर चढ़ भी जाए तो उस पेड़ को भी बर्बाद कर देती है। इसीलिए इसको खत्म करना बहुत जरूरी होता है। बड़ी ही आसानी से आपको किसी भी खेती वाली दुकान पर, जहां खेती का सामान मिलता है, दवाइयां, बीज वगैरह मिलती है, इस बेल की या चौड़ी पत्तेदार कोई भी खरपतवार है उसकी दवाई मिल जाएगी। लाकर स्प्रे कर दीजिए। कई सारी फॉर्म और भी आती है कि आप यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं, राख में, रेत में मिलाकर डाल सकते हैं, पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो किसान भाई प्रेफर करते हैं या उसको कारगर मानते हैं, जो सिद्ध भी होता है, वो स्प्रे ही होता है।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व

0: स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
4: ये NKD है, तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहां पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है जो गड़बड़ आइटम होता है।

जहां पे इन्फेक्शन होता है उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन होती है, वन इज एक्यूट यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देर इज फीवर और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज, और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडिमा एक होता है, लिम्फेडिमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में जहां ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं स्क्रोटल एरिया होता है वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों के किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती है। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट पे जो पिक्चर है इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है ये लिम्फोडिमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है, ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा माइक्रोफाइलेरिया बेबी उसके अंडर जाता है शरीर में और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रोफाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद मोस्टली मिडनाइट में हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए ब्लड टेस्ट कराया नेगेटिव आया, लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है WHO का सिस्टम है उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं, और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त सैंपल लिया जा रहा है और एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है। और इसके लिए क्या करना है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाएं बढ़ती हैं जिसको सभी लोगों को उसका सेवन करना होता है। इसमें आप देखेंगे जो हरा कलर दिखाई पड़ रहा है मैप में चलाया जाएगा, उसकी सूची अर्चना जी आपको दे देंगी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस जिले या उसके आसपास के जिले के होंगे इसीलिए आपको इसमें इनवाइट किया गया है। उसे हम कहते हैं DA, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने क्षेत्र का पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा पोलियो में एक माइक्रो प्लान बनता था, पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल के से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को हमें ट्रैक करना पड़ता है और सबको देना है दवा एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो, अदरवाइज एवरीबडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार।

तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले ही उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूं, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे वर्कर जाते हैं घर पे, जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन। हम तो यहां तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ही ये विदेश से आई हैं और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए, सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ देम फील कि हम क्यों खाएं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हम तो गुड नाइट कॉयल लगाते हैं, हमारे पास मच्छर काटने का भी नहीं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कभी तो पार्क में निकलते होंगे, कभी तो मार्केट जाते होंगे, क्या वहां मच्छर नहीं काट सकता? और ये जो मच्छर काटता है, ये मच्छर क्यूलेक्स वेराइटी का होता है। मच्छर की फैमिली होती है, चार मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, मंसोनिया होते हैं। लोग खाते नहीं थे, तो ये रीजन है लोगों ने दवाएं क्यों नहीं खाई थी। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया कि नहीं, आपको घर में दवा बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है, तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई। जो सेकेंड कैटेगरी है, अब्सेंट वाली, ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वेर नॉट एट होम। ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके, या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की पीएससी या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में 18%, ये रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए आप जो नहीं खा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से, और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया, हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार निम्फोडेमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सके। हाइड्रोसिल केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए बाएं तरफ अनीमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सेंट्रिश की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनीमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है। जो दवाएं दी जाती है इस मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, डीईसी एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और डीईसी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रो फाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजोल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृमि, जो मैं पहले बता रहा था आपको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मैल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनीमिया का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म, ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है। जहां जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवरमेक्टिन उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा अनीमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जिसे स्केबीज है, जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो जुए होते हैं, आइवरमेक्टिन से वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रिपल ड्रग में, न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, हुकवर्म और जुए, ये सब भी मर जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन

0: को देना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, और आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि डोंट वेट फॉर हेल्थ वर्कर टू कम टू योर हाउस, यू शुड एक्चुअली अप्रोच टू द हेल्थ वर्कर एंड ट्राई टू गेट द मेडिसिन एज सून एज पॉसिबल। इसको केवल चबा के खाना है, चबा के खाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चबा के खाना है। जो दूसरी आप देख रहे हैं बीच में सफेद कलर की, ये आइवरमेक्टिन की गोली है, इसको पानी के साथ लेना है। इसका नियम ये होता है, ये हाइट के हिसाब से होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है। 90 सेंटीमीटर के आमतौर पर उनकी हाइट होती है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को एक गोली, 120 से 140 तक दो गोली, 140 से 160 तीन गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको चार गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं ये DEC है, ये उम्र के हिसाब से दी जाती है। 2 साल से 5 साल के बच्चे को एक गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को दो गोली, और 15 से बड़े को तीन गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगी, उसे घबराना नहीं है, वो उसकी मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स, क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया, तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले, क्या होगा, उल्टा आपको आके काट ही लेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, और अब मैं ओपन करता हूँ डिस्कशन। अर्चना जी ओवर टू यू।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है।

0: बच्चों की बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
4: नमस्कार, मैं मनोज वाजपेयी। मेरा बचपन ऐसे ही एक छोटे गांव में बीता है और मैंने लोगों को काला आजार की बीमारी से होने वाली तकलीफों से लड़ते हुए देखा है। इसलिए मैं जानता हूं कि काला आजार जैसी जानलेवा बीमारी कितनी तकलीफ दे सकती है। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है, उसी तरह काला आजार बालू मक्खी से फैलने वाली एक घातक बीमारी है। तो आज मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, शरीर में कालापन दिखे या पेट में सूजन रहे, तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में इसकी जांच कराएं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में केवल मुफ्त जांच और इलाज ही नहीं, मजदूरी का मुआवजा भी मिलता है। बस एक आखिरी बात, जब भी सरकारी छिड़काव कर्मी बालू मक्खी के खात्मे के लिए आपके घरों में आए, तो कृपया उनकी सहायता पूरी तरह से करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा सहयोग खत्म करेगा काला आजार रोग।
5: स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: यो, सुन लो भाई, सुन लो बहना, फाइलेरिया को भगाने का मौका नहीं गवाना।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहां हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं, और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। मां थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई है। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैग छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहां जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब एक बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी एक डोज प्रभावी मानी गई है। यह कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है?
2: सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है,
1: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला तीन चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था, अब बताओ ये क्या माने?
1: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है। कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है। जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
2: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
0: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी,

0: समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
1: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं, हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां? ये भी गलतफहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
0: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती। और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए। पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए। बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
1: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
0: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
2: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
1: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
0: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे, अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
2: कहना, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
1: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
2: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई हैं।
0: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
2: बस यही चाहिए, सवाल रहे, जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
1: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
2: और मेरी तरफ से एक बात और, माँ होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
0: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
1: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक

समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जानकारी लें और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना। यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यूविन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, NH58 सुभारतीपुरम, मेरठ में।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: कांवड़ यात्रा करते समय स्वास्थ्य खराब होने पर तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप में जाएं, लापरवाही ना बरतें। इसी संदेश के साथ आप सभी शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM से मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। और आज अपने स्टूडियो में अकेला मौजूद नहीं हूं, आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी स्पेशल गेस्ट। आप हैं आचार्य श्वेता गर्ग और आप वैदिक वास्तु एक्सपर्ट एंड कोच हैं। मैम स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: थैंक यू जी।
0: मैम वास्तु से रिलेटेड ढेर सारी बातें आज आपसे हमारी होने वाली हैं और हम आज का स्पेशल टॉपिक ये भी रखने वाले हैं कि इंडस्ट्री रिलेटेड वास्तु को थोड़ा समझा जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वास्तु में, जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किसी जगह को खरीदते हैं इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप करने के लिए, तो क्या ध्यान रखें?
1: तो सबसे पहले तो वास्तु के बारे में कुछ चीजें जो मिथ है लोगों के, कि जब हम वास्तु की बात करते हैं तो हम केवल दिशाओं तक सीमित होकर रह जाते हैं कि हमें पूर्व में क्या बनाना है, ईस्ट में क्या बनाना है, वेस्ट में क्या बनाना है, साउथ में क्या बनाना है। तो वास्तु केवल दिशाओं का गेम नहीं है, वास्तु गेम है हमारी एनर्जीज का और हमारे 5 एलिमेंट्स का। तो इन सभी चीजों को साथ में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, दिशाएं भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, तो आपको दिशाओं में भी ध्यान में रखना है कि किस दिशा में क्या वास्तु दोष है या क्या वास्तु दोष नहीं है। तो ये एक डिटेल टॉपिक है, लेकिन आपको जब प्रॉपर्टी सिलेक्शन करना है तब आप बहुत ज्यादा दिशाओं का ध्यान नहीं रख सकते। अगर आप एक प्लॉट खरीद रहे हैं तब आपको किन चीजों का ध्यान में रखना है, उस प्लॉट की सराउंडिंग, कि उसके आसपास किस तरह की चीजें बनी हुई हैं। कोई भी अगर कोई मंदिर के पास कोई प्लॉट लेता है या कोई बिजनेस करता है तो उसको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। या फिर आप किसी स्कूल के पास या हॉस्पिटल के पास जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो प्रॉपर्टीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। तो आपको सराउंडिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बात आती है हमारी एनर्जीज की। जो आप घर बनाने की बात कर रहे हैं, घर बनाने के लिए जो प्रकृति होती है, जो एनर्जीज होती है, वो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हमें चाहिए होती है। और एक इंडस्ट्री को रन करने के लिए एक अलग तरह की एनर्जी हमें चाहिए। तो एनर्जी का ज्ञान होना, उसको चेक करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रॉपर्टी सिलेक्शन के समय। तो वो हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए।

0: डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, NH 58, सुभारतीपुरम, मेरठ में।
1: जब कॉलेज में जाने की बारी आई थी, मुझे बात ये सबने समझाई थी, एक चक्कर है प्यार, उसमें घूमना नहीं, समंदर सा होगा डूबना नहीं, जरा बच के रहना, संभल के चलना, हो जाएगा बेहाल तो फिर ना कहना। और कहते कहते, सुनते सुनते, टकरा जो गया उस पार में, डर जा बेटा, लग गई तेरी, फट गया साला तू प्यार में।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर अब आप सुनेंगे वैदिक वास्तु एक्सपर्ट एंड कोच आचार्य श्वेता गर्ग जी को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आर शे पंकज के साथ।
1: अब बात करें कि वास्तु की इंडस्ट्री की तरफ

0: आ जाए तो वास्तु की ऐसा मतलब क्या नीड है, नीड की बात करें तो
1: देखिए नीड क्या है, जो वास्तु है वो हमारे बहुत हजारों साल पहले जो ज्ञानी थे ऋषि मुनि थे उन्होंने लिखा एक ग्रंथ के थ्रू। उनका पर्पस क्या था कि एक इंसान, वो बहुत दूरदर्शी होते थे, पहले के लोग बहुत ज्ञानी होते थे, उनको पता था कि आगे आने वाले टाइम में लोगों की लाइफ इतनी फास्ट हो जाएगी और इतनी ज्यादा लिमिटेशन हो जाएगी रहने के लिए या प्रॉपर्टी को बनाने के लिए कि उन्हें बहुत जरूरत पड़ेगी इस वास्तु के ज्ञान की, इस टूल की। तो आज के टाइम में जब हम वास्तु को यूज करते हैं तो हर एक सेक्टर, इतनी फास्ट लाइफ है, इतनी तरह की प्रॉब्लम्स, इतनी तरह के प्रेशर एक इंसान की लाइफ में है कि हम अपनी उन प्रॉब्लम्स को लेकर अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हर एक चीज, अगर आप जॉब की बात करें तो जॉब में वास्तु आपको बहुत हेल्प कराता है, आपको प्रमोशंस दिलाने में हेल्प कराता है, आपकी हेल्थ अच्छी रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इवन आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा गवर्न करता है। जैसी लैंड, जैसी भूमि की प्रकृति में आप रहते हो वैसा ही आपका मन, आपका दिमाग होता है और उसी से आपके रिश्ते भी गवर्न होते हैं। तो आपके रिश्ते अच्छे करने में बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो किसी भी तरह का छोटा बड़ा कैसा भी आपका बिजनेस है या फिर आप कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हैं तो इन सभी चीजों में वास्तु आपको बहुत हेल्प करता है। तो मैं ये कहूंगी छोटी सी लाइफ है, हम उसको बहुत ज्यादा परेशानियों को झेलते हुए स्पेंड नहीं कर सकते। तो एक ये बहुत ही अच्छा टूल है हमारे पास जिसको यूज कर हम अपनी सभी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं और आज की डेट में करनी भी चाहिए जब इतनी फास्ट लाइफ है, लोग इतना ग्रो भी कर रहे हैं, हमारी कंट्री इतना ग्रो कर रही है। अब एक बिजनेसमैन अगर ग्रो करता है कि इंडस्ट्री अगर ग्रो करती है तो अल्टीमेटली हमारा देश ग्रो करता है। तो हमारा मिशन है कि हम हर एक इंडस्ट्री को हेल्प करें जिससे कि एक इंडस्ट्री कभी भी बंद ना हो, कभी भी डाउन ना जाए, बहुत ज्यादा ग्रो करे, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की उसकी इंडस्ट्री पर ही डिपेंड होती है। तो हमारी पूरी टीम का फोकस है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रहे हैं लगाने के लिए भी और उनको ज्यादा ग्रो करने के लिए भी।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर अब आप सुनेंगे वैदिक वास्तु एक्सपर्ट एंड कोच आचार्य श्वेता गर्ग जी को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरशे पंकज के साथ।
1: मैम, बिजनेस रिलेटेड वास्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड इंडस्ट्रियां लगती हैं कई बार, लेकिन बिजनेस जो है कम आता है या आता ही नहीं है, तो क्या ऐसी चीज नोटिस करें जो इंडिकेट करे कि ये तो कोई समस्या है, जो इसको थोड़ा ठीक किया जाए तो थोड़ा रास्ते पे आ सकती हैं चीजें?
2: बिल्कुल। तो किसी भी इंडस्ट्री में जब हम वास्तु की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि केवल दिशाओं तक ही सीमित नहीं है। लोग दिशाएं तो खुद देख लेते हैं कि मुझे कौन सी मशीन किस दिशा में लगानी चाहिए या मुझे किस तरह के एलिमेंट की एक्टिविटी किस दिशा में करनी चाहिए। वहां तक का वास्तु तो आर्किटेक्ट्स भी गाइड कर देते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स भी गाइड कर देते हैं, लेकिन वास्तु इससे बहुत ज्यादा आगे है। एक जगह की, एक लैंड की एनर्जीज को अगर आप बहुत स्ट्रांग कर देते हैं, एनर्जीज स्ट्रांग कैसे होती हैं, उसको पहचाना कैसे जाता है, अगर आप खुद अपने थोड़े थोड़े टेस्ट लगाना चाहें, आप खुद टेस्ट करके देख सकते हैं। सबसे आसान टेस्ट है कि अगर आप किसी भी लैंड की एनर्जी को टेस्ट करना चाहते हैं, तो उस जमीन में, उस भूमि पर एक गड्ढा बनाइए, 1 फीट बाय 1 फीट का बना सकते हैं, 1 फीट गहरा बना लीजिए, और उस गड्ढे में तेजी से पानी की एक बकेट भरकर डालकर देखिए और उसके मूवमेंट को आप चेक करिए। ये एक बहुत ही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ मेथड है और बहुत ही आसान और सटीक मेथड है जो हमेशा काम करता है। अगर जो पानी आपने डाला है उसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होता है, तो ये सिग्निफिकेंस है कि आपकी लैंड की एनर्जीज अच्छी हैं। और उसी पानी का मूवमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी वहां की लैंड की एनर्जीज खराब है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और बहुत ही छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको करके आप अपनी लैंड की एनर्जीज को अच्छा भी कर सकते हैं। तो लैंड की एनर्जी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी लैंड की एनर्जीज जरूर अच्छी होनी चाहिए।
1: मैम, एनर्जीज की आपने बात की है और अक्सर ये बहुत कॉमन देखा जाता है, ज्यादातर जब वास्तु एक्सपर्ट जो होते हैं वो बताते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की वो बताते हैं कि ये चीज आपको हटानी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर घर का बाथरूम हो गया, कुछ हो गया, तो क्या सचमुच चीजें हटाने से ही ठीक हो गया या इसके अलावा भी कुछ होता है?
2: नहीं, देखिए, वास्तु एक इंसान की हेल्प करने के लिए बनाया गया है, किसी को डराने के लिए या परेशानी क्रिएट करने के लिए नहीं बनाया गया है। ऐसे ही हमारे वास्तु में प्रिंसिपल तो है कि ये चीज इस दिशा में बनानी चाहिए, लेकिन वही हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सिंपल उपाय भी हमें दिए हैं कि अगर ये दिशा में नहीं है, इसकी जगह किसी और दिशा में है, तो आप क्या छोटे छोटे उपाय कर उनको ठीक कर सकते हैं। तो कभी भी वास्तु के लिए हमें डराना नहीं चाहिए कि ये चीज आपको हटानी ही जरूरी है। 99% वास्तु दोष ऐसे ही होते हैं कि जिनका आप छोटे छोटे उपाय कर उनकी रेमेडी कर सकते हैं और उनके बैड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो ऐसा तोड़ फोड़ वाला वास्तु ये करना जरूरी नहीं है। वास्तु इज समथिंग कि आपकी लाइफ को कैसे ग्रो करें बहुत छोटे छोटे उपायों के साथ।
1: बिल्कुल।

0: नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स, लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में। आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: प्रशासन द्वारा बनाए गए ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करें, जाम से बचें, समय बचाएं। इसी संदेश के साथ सभी शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर अब आप सुनेंगे वैदिक वास्तु एक्सपर्ट एंड कोच आचार्य श्वेता गर्ग जी को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आर शे पंकज के साथ। हम टॉपिक पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब समझना चाहते हैं, आजकल देखा जा रहा है ये बहुत ज्यादा कि शादियां होती हैं और नए नए हर दिन कलेश शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी में अनबन शुरू हो जाती है। क्या वास्तु में भी कुछ इसका उपाय है कि कुछ ये चीजें कर लें तो ठीक हो सकता है?
1: देखिए, जहां रिलेशन की बात आती है, अगर हम आज कहें कि आज का जो लोगों का टेम्परमेंट है वो ही इतना ज्यादा कम है कि लोग एक दूसरे को बियर ही नहीं कर रहे हैं, किसी भी बात को टॉलरेट ही नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वहां भी हमारा वास्तु हमारी बहुत हेल्प करता है। अगर आपने अपने घर के वास्तु को बैलेंस किया है, जो रिलेशनशिप है, स्पेशली हम बात करें हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए हम देखें तो कुछ पर्टिकुलर जोन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमारे घर का जो नॉर्थ वेस्ट होता है, वायव्य दिशा, और जो नॉर्थ होता है, उत्तर दिशा, उनके बीच का एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वो दिशा अगर आपकी बैलेंस्ड है, वहां पर किसी तरह का वास्तु दोष नहीं है, मतलब वहां पर टॉयलेट नहीं है, सेप्टिक टैंक नहीं है, किचन नहीं बना हुआ है, रेड कलर नहीं किया हुआ है, अगर वो पूरी तरह से हेल्दी है, तो ऐसी जगह में रहने वाले कपल के रिलेशन आपको हमेशा बहुत अच्छे दिखेंगे। ऐसे ही साथ में साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट अगर आपने बैलेंस रखा है तो कपल के रिलेशन हमेशा बहुत अच्छे, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी मिलेगी। तो अगर किसी के भी घर में बच्चों की शादियां हो रही हैं, उनके घर में नई बहू आने वाली है, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की कि वो अपने घर में इन दोनों जोन को एटलीस्ट बहुत अच्छा रखे, जिससे कि आगे जो कपल बन रहे हैं उनके रिलेशन अच्छे रहे। तो ये जोन हमेशा बैलेंस कर रखने चाहिए, और बहुत अच्छा करने के लिए इनको जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है वहां पर फ्रेश फ्लावर्स जरूर रखने चाहिए। उससे क्या होता है कि जो कपल है जो उस घर में रह रहे हैं तो उनके रिश्तों में एक फ्रेशनेस रहती है, हैप्पीनेस बनी रहती है, तो ये जरूर करना चाहिए जिससे कि आप शादी होने वाले नए कपल्स खुश रहें।
0: मैम, फ्लावर्स की आपने बात की तो फ्लावर्स के एक दो के नाम भी हम जानना चाहेंगे कि ये रख लीजिए।
1: देखिए, रोज फ्लावर्स रखें सबसे अच्छा है, रोज फ्लावर रख सकते हैं। अगर आपको लोटस कहीं से मिलता है आप लोटस भी रख सकते हैं। बाकी व्हाइट कलर के फ्लावर्स जिनकी भी अच्छी खुशबू, अच्छी फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स आप यहाँ पर रख सकते हैं।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: कांवड़ यात्रा के दौरान निर्धारित रास्तों का ही प्रयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर अब आप सुनेंगे वैदिक वास्तु एक्सपर्ट एंड कोच आचार्य श्वेता गर्ग जी को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आर्षे पंकज के साथ। आज जो हमारा ये इंटरव्यू है ये कुछ हमारे तमाम लिसनर्स तक पहुंचेगा और कुछ उनमें ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी नया घर तलाश रहे होंगे या प्रॉपर्टी देख चुके होंगे वहां नया घर बनाने जा रहे होंगे। तो कुछ बेसिक रेमेडी या कुछ बेसिक बातें मैं चाहूंगा आप बताएं कि आप इन चीजों का तो थोड़ा ध्यान रखें और साथ में आपका नंबर भी हम चाहेंगे ताकि डिटेल में बात करें वो आपसे और आगे की सलाह लें।
1: जी, तो जो भी लिसनर्स हैं हमारे जो हमें सुन रहे हैं, अगर आप नया घर बना रहे हैं तो आपको दो तीन चीजें तो जरूर ही ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले अपने घर का ईशान कोण, उसको हमेशा बैलेंस करके रखें। ईशान कोण में कभी भी टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, वॉशिंग मशीन इस तरह का कोई भी सामान ना रखें। किचन कभी भी अपने ईशान कोण में ना बनाएं। और जब कलर्स आप करते हो तो ईशान कोण में रेड, येलो इस तरह के कलर्स कभी ना करें। जो हमारा ईशान कोण है उसमें जो भी चीजें मैंने ये बोली हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज आती है तो आपको 100% कैंसर या पैरालिसिस जैसी बीमारियां ऐसी जगह में जरूर देखने के लिए मिलती हैं। तो जब हम अगर वास्तु दोष ठीक भी कर देते हैं तब भी इंसान की लाइफ में कैंसर कभी कभी इस स्टेज तक पहुंच जाता है जिसको ठीक करना पॉसिबल नहीं होता। तो एक इंसान की लाइफ खराब हो जाती है। और जब एक इंसान को कैंसर होता है तो केवल एक पर्सन को नहीं होता, पूरी फैमिली इससे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये मैं जरूर कहूंगी कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को आप बैलेंस जरूर रखो। उसके अलावा वास्तु में एक चीज है जो लोग गलत तरीके से समझ जाते हैं। वास्तु में कहा जाता है कि आपको अपने साउथ वेस्ट को, नैऋत्य कोण को हैवी बनाना चाहिए, हैवीएस्ट बनाना चाहिए अपने घर में। तो उसको हैवी करने के चक्कर में लोग साउथ वेस्ट में वाटर टैंक बना देते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक बना देते हैं, मुमटी बनाते हैं या बरसाती बनाते हैं, फिर उसके ऊपर एक टंकी बना देते हैं। उनका सोचना है कि हमने इसको हैवीएस्ट बना दिया है। आप उसको हैवी बनाइए, ऊंचा बनाइए, लेकिन पानी की टंकी साउथ वेस्ट में कभी मत रखिए। मैंने हजारों केस किए हैं जहां पर साउथ वेस्ट में पानी की टंकी है, वहां हमें देखने को हमेशा मिलता है कि या तो वहां पर किसी की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है या पैरालिसिस के पेशेंट्स वहां पर मिलते हैं। तो आपको अपने साउथ वेस्ट में पानी की टंकी कभी भी नहीं बनानी है। तो ये दो वास्तु दोष ऐसे हैं जिनको आप हमेशा ध्यान में रखिए। उसके अलावा कोई और छोटे मोटे वास्तु दोष होते हैं तो बहुत छोटे उपायों से वो ठीक हो जाते हैं। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें।
0: मैम कॉन्टेक्ट नंबर भी हम चाहेंगे ताकि डिटेल से बात करने के लिए।
1: श्योर, तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 8222902025, इस नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
0: तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करें और बात करें, जिंदगी की अपनी समस्याओं से थोड़ी निजात पाएं।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

रौन कर इश्क मेरा तुम किनारा कर गए, छोड़ गए मुझको बेसहारा कर गए। तुम चाहो तो भी ना मिल सको कि हम दर्द मेरे

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर अब आप सुनेंगे वैदिक वास्तु एक्सपर्ट एंड कोच आचार्य श्वेता गर्ग जी को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरशे पंकज के साथ। मैम, आज के टाइम में हर कोई स्टूडेंट लाइफ का बच्चा हो, वो आगे बढ़ता है, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करता है, उसके बाद उसका टारगेट होता है कि वो जॉब पाए, या तो प्राइवेट सेक्टर में उसको अच्छा जॉब मिल जाए या गवर्नमेंट सेक्टर में उसकी कहीं अच्छी जॉब लग जाए। एंड सोशल मीडिया का भी आजकल क्रेज है कि सोशल मीडिया पर हम एस्टेब्लिश हो जाएं, फेमस हो जाएं, तो कुछ बेसिक रेमेडी इन चीजों के लिए भी है क्या?
1: देखिए, जॉब के लिए जो हमारी डायरेक्शन होती है हमारे घर में, वो होती है नॉर्थ दिशा। तो आप अपनी नॉर्थ दिशा को बैलेंस रखिए। टॉयलेट, किसी भी तरह की गंदगी, कूड़ा, कचरा, क्लिटर, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए नॉर्थ दिशा में। नॉर्थ को थोड़ा ओपन रखिए और हो सके तो वहाँ पर कुछ प्लांट्स लगाइए, ये सबसे अच्छी रेमेडी है। जब आप नॉर्थ में प्लांट्स लगाते हैं तो आपकी उत्तर दिशा की जो एनर्जीज हैं वो बढ़ती हैं, और उत्तर दिशा ही है जो आपको जॉब दिलाती है या आपकी जॉब में आपको प्रमोशंस दिलाती है, नई नई अपॉर्चुनिटी दिलाती है। तो अपनी नॉर्थ दिशा को बैलेंस रखिए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ईस्ट दिशा भी साथ में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो उनको क्या करना है कि अपने ईस्ट में उगते हुए सूरज का फोटो जरूर लगाएं। अगर हो सके, आजकल बच्चे जल्दी उठते नहीं है तो उनके लिए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप सुबह के समय, सूर्य उदय के समय सूर्य को जल जरूर दें। पर आजकल बच्चों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क होगा, तो वो बच्चे अपने ईस्ट में उगते हुए सूरज का फोटो तो एटलीस्ट जरूर लगा लें। उससे क्या होता है कि उनके गवर्नमेंट जॉब के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें उनको जरूर करनी चाहिए जिससे कि उनको अच्छा जॉब मिल पाए।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920085।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर अब आप सुनेंगे वैदिक वास्तु एक्सपर्ट एंड कोच आचार्य श्वेता गर्ग जी को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आर शे पंकज के साथ।
1: मैम, कुछ कॉमन रेमेडीज जो चाहे तो कोई भी उन्हें यूज करे डेली, तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर हर दिन बनी रहे और जो भी वो करने जा रहे हैं उनका काम वो अच्छे से करते रहे विदाउट एनी स्ट्रेस, तो कुछ ऐसा भी है?
2: जी, एक तो सबसे पहले मैं कहूंगी, जब भी हम वास्तु की या किसी भी ऑकल्ट की बात करते हैं तो कोई भी चीज बिना कर्म के मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक तो यूथ को ये सोचना छोड़ना चाहिए कि हम अगर वास्तु करेंगे या हम एस्ट्रोलॉजी यूज करेंगे तो क्या हमें सब कुछ बैठे बैठे मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मेहनत आपकी ही है। ये जो साइंसेज हैं ये आपको हेल्प करती हैं कि जो आपने मेहनत की है उसके रिजल्ट्स आपको जल्दी मिले और अच्छे से अच्छे मिले। तो मेहनत आपको ही करनी है, लेकिन साथ में आपको अपने घर के नॉर्थ में आपको एक प्लांट जरूर रखना है। अगर आप तुलसी का पौधा रखते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है। तुलसी के पौधे में गौशाला की मिट्टी डालकर रखिए, फिर देखिए कि आपको कितनी जल्दी और कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ईस्ट में जैसे मैंने कहा कि आप सूर्य का फेस जरूर लगाइए, वो आप जरूर करिए, और अपने घर में डेली बेसिस पर आप गाय के घी का दीपक जरूर जलाइए। जो ये गाय का घी होता है उसका जब आप दीपक जलाते हो तो वो हमारी लैंड की, हमारे एनवायरनमेंट की एनर्जीज को बहुत अच्छा करता है। तो हर घर में हमारे जो सनातनी हैं सभी लोग दीपक जलाते ही हैं, तो अब से उनको क्या करना है कि गाय के घी का ही दीपक अपने घर में जलाना है। और जो भी आपकी इच्छा है उसको आप वेस्ट में बैठकर, पश्चिम में बैठकर मैनिफेस्ट करें। आप चाहे तो पेपर पर लिखकर वेस्ट में पेस्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी इच्छा आप वेस्ट में रखते हैं, लिखकर बैठकर सोचते हैं, वो डेफिनेटली आपकी पूरी होती है। तो जो भी आपके विशेज हैं उनको जल्दी जल्दी पूरा कर सकते हैं छोटे छोटे उपायों के साथ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, NH58 सुभारतीपुरम मेरठ में।
2: कांवड़ यात्रा को बनाएं स्वच्छ यात्रा, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही डालें। इसी प्यारे संदेश के साथ आप सभी शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर अब आप सुनेंगे वैदिक वास्तु एक्सपर्ट एंड कोच आचार्य श्वेता गर्ग जी को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरशे पंकज के साथ।
1: मैम, कुछ कॉमन रेमेडीज जो चाहे तो कोई भी उन्हें यूज करे डेली, तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर हर दिन बनी रहे और जो भी वो करने जा रहे हैं उनका काम वो अच्छे से करते रहे विदाउट एनी स्ट्रेस, तो कुछ ऐसा भी है?
2: जी, एक तो सबसे पहले मैं कहूंगी, जब भी हम वास्तु की या किसी भी ऑकल्ट की बात करते हैं तो कोई भी चीज बिना कर्म के मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक तो यूथ को ये सोचना छोड़ना चाहिए कि हम अगर वास्तु करेंगे या हम एस्ट्रोलॉजी यूज करेंगे तो क्या हमें सब कुछ बैठे बैठे मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मेहनत आपकी ही है। ये जो साइंसेज हैं ये आपको हेल्प करती हैं कि जो आपने मेहनत की है उसके रिजल्ट्स आपको जल्दी मिले और अच्छे से अच्छे मिले, तो मेहनत आपको ही करनी है। लेकिन साथ में आपको अपने घर के नॉर्थ में आपको एक प्लांट जरूर रखना है। अगर आप तुलसी का पौधा रखते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है। तुलसी के पौधे में गौशाला की मिट्टी डालकर रखिए, फिर देखिए कि आपको कितनी जल्दी और कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ईस्ट में जैसे मैंने कहा कि आप सूर्य का फेस जरूर लगाइए, वो आप जरूर करिए, और अपने घर में डेली बेसिस पर आप गाय के घी का दीपक जरूर जलाइए। जो ये गाय का घी होता है उसका जब आप दीपक जलाते हो तो वो हमारी लैंड की, हमारे एनवायरनमेंट की एनर्जीज को बहुत अच्छा करता है। तो हर घर में हमारे जो सनातनी हैं सभी लोग दीपक जलाते ही हैं, तो अब से उनको क्या करना है कि गाय के घी का ही दीपक अपने घर में जलाना है, और जो भी आपकी इच्छा है उसको आप वेस्ट में बैठकर, पश्चिम में बैठकर मैनिफेस्ट करें। आप चाहे तो पेपर पर लिखकर वेस्ट में पेस्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी इच्छा आप वेस्ट में रखते हैं, लिखकर बैठकर सोचते हैं, वो डेफिनेटली आपकी पूरी होती है। तो जो भी आपके विशेज हैं उनको जल्दी जल्दी पूरा कर सकते हैं छोटे छोटे उपायों के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर अब आप सुनेंगे वैदिक वास्तु एक्सपर्ट एंड कोच आचार्य श्वेता गर्ग जी को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरशे पंकज के साथ। मैम, अभी आपका कोई, जैसे आप वास्तु पे टिप्स देते हैं और बताते हैं, तो कोई आप सेशन वगैरह भी करते हैं? हाल फिलहाल में कोई ऐसा प्रोग्राम है जिससे ऑफलाइन माध्यम से आपसे जुड़ा जा सके और किसी भी विषय पर बात कर सलाह ली जा सके?
1: जी, हम लोग हर महीने किसी न किसी सिटी में अलग अलग ऑफलाइन के प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं। यहाँ पर लोग हमसे आकर जुड़ते हैं, सलाह लेते हैं, अपने मैप्स भी लेकर आते हैं। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम अभी आने वाले 16 अगस्त को गुड़गांव में हमने रखा है। तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत सारे बिजनेसमैन आने वाले हैं, जो वास्तु के बारे में चर्चा करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करेंगे, उसके हम वहाँ पर उनको सॉल्यूशंस देने वाले हैं। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी लोग फॉलो करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो लोग 16 अगस्त को हमसे गुड़गांव में मिल सकते हैं। उसके लिए हमारी टीम के नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
0: नंबर एक बार हम चाहेंगे रिपीट, आप बता दें।
1: 8222025 इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
0: सो नंबर आपके पास है और ऑफलाइन मिलने का मौका आपके पास है। अगर कोई समस्या है एंड लगता है आपको कि वास्तु से हल हो सकती है, तो प्लीज जाकर मिलें, इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें। बाकी यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर अब आप सुनेंगे वैदिक वास्तु एक्सपर्ट एंड कोच आचार्य श्वेता गर्ग जी को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आर्ष पंकज के साथ। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी हमने बातें की। एंड चलते चलते हमारे लिसनर्स के लिए एक मैसेज हम आपसे जरूर लेना चाहेंगे। सो क्या होगा वो मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए?
1: देखिए, आप सभी को मैं ये कहूंगी कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, इवन हमारे फिल्म एक्टर्स हैं, सभी लोग जब भी कोई ऑकल्ट की बात होती है, वास्तु की बात होती है, एस्ट्रोलॉजी की बात होती है, वो लोग कभी भी हेजिटेट नहीं करते किसी भी नई चीज को फॉलो करने में, अपनाने में, क्योंकि हर किसी को पता है कि हमारा एक टाइम पीरियड है काम करने का, हमेशा वही लेवल नहीं होगा, वही एज नहीं होगी। तो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, वो लोग कभी भी हेजिटेट नहीं करते इन विद्याओं को यूज करने में। तो आप भी एक मिडिल क्लास लोग हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, जो भी हैं, आप लोगों को भी कभी हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि मैं अगर इन चीजों की हेल्प लूंगा तो कोई क्या कहेगा। कोई कुछ भी कहे, आपको इसके लिए फॉदर करने की जरूरत नहीं है। आप अपना फ्यूचर देखिए और इन चीजों को फॉलो कर आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो व्हाई टू वेस्ट योर टाइम एंड लाइफ, एक ही जिंदगी है, आराम से खुश होकर जिए। जो भी परेशानियां हैं, हमारे पास एक टूल है, ये भी तो भगवान ने हमारे लिए ही बनाया है, तो इसको यूज करने में किसी तरह की हेजिटेशन ना रखें। मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप इफ बट में मत पड़ो, आप यूज कर देखो, और अगर आपको ना अच्छा लगे तब आप इसको छोड़ सकते हैं। बिना यूज करे आप इसको नकारें, वो ठीक नहीं है, उसको फॉलो जरूर करें और ये आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा ग्रोथ दिला सकते
0: हैं। बिल्कुल, जिंदगी में तमाम तरीके की समस्याएं हैं और हर समस्या का निवारण है, एंड वास्तु से भी वो समस्या हल हो सकती है। तो प्लीज उसे ट्राई करके देखिए। एंड आज की हमारी स्पेशल गेस्ट आचार्य श्वेता गर्ग, वैदिक वास्तु एक्सपर्ट एंड कोच हमारे साथ मौजूद थी, जिनसे काफी सारी बातें हुई वास्तु पर। बाकी आपको ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे सोशल हैंडल्स पर आकर। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको मिल जाते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों जगह पर। बाकी कुछ बातें आपसे मैं हमेशा कहकर जाता हूं कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से, प्लीज हेलमेट लगाया कीजिए। फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाया कीजिए। बाकी क्या रखा है जिंदगी में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

गाड़ी चलाते समय कांवड़ियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, आपकी एक लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है। इसी संदेश के साथ सभी शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। आइए मिलकर इस कांवड़ यात्रा को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। सभी शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज का ये खास पॉडकास्ट उनके लिए है जो वकालत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी खास अतिथि सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर डॉक्टर रीना बिश्नोई मैम। मैम स्वागत है आपका।
1: पंकज जी थैंक यू और धन्यवाद, आपने मुझे आज इस अवसर पर बुलाया।
0: मैम हमारे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में चल रहे कोर्सेज के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे।
1: सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी विधि के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है और उत्तर भारत में ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो BA LLB LLM LLM एग्जीक्यूटिव PG डिप्लोमा PhD और LLD प्रोग्राम को देता है।
0: मैम अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहेंगे, कोई बच्चा आकर इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या एलिजिबिलिटी है?
1: अगर हम UG कोर्स की बात करें दैट इज BA LLB, उसमें 10+2 आपका होना चाहिए और 45% एग्रीगेट होता है, उसमें हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है संस्था का, तो उसके माध्यम से वो प्रवेश ले सकता है BA LLB में। इसके अलावा PG डिप्लोमा का हमारा कोर्स है, PG डिप्लोमा हम लोग ह्यूमन राइट्स लेबर लॉ पेटेंट IPR इन विषयों पे कराते हैं, इसमें किसी भी स्ट्रीम से जो ग्रेजुएट है जो ग्रेजुएशन किया हुआ है वो इसमें प्रवेश ले सकता है और इस विषय पर अपने जो भी आप ह्यूमन राइट्स हैं पेटेंट हैं उस पर आप अपना डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं।
0: मैम कितने टाइम ड्यूरेशन के सभी कोर्सेज हैं यूजी के भी और पीजी के भी?
1: हमारा जो BA LLB का कोर्स है ये 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है। जो हमारा पीजी डिप्लोमा का कोर्स है वो 1 वर्ष का कार्यक्रम है। इसके अलावा हमारे संस्थान में मास्टर्स में LLM है, LLM जो 2 ईयर्स कोर्स है वो रेगुलर कोर्स है और उसमें हम ड्यूअल स्पेशलाइजेशन देते हैं। और जो हमारे यहाँ 4 स्पेशलाइजेशन है हमारे संस्थान में, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड द कॉर्पोरेट लॉ। इन 4 स्पेशलाइजेशन में विद्यार्थी जो है अपने इंटरेस्ट से कोई भी 2 स्पेशलाइजेशन चूज कर सकता है और हम लोग ड्यूअल स्पेशलाइजेशन की डिग्री मास्टर्स में देते हैं। इसके अलावा हमारे पास मास्टर्स में LLM एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, दोज हु आर प्रोफेशनल, जो लोग जॉब में हैं और मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा LLM एग्जीक्यूटिव का प्रोग्राम है, ये 3 वर्षीय प्रोग्राम है।
0: मैम आपने इन तमाम कोर्सेज के बारे में बताया और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कॉलरशिप पर एडमिशन खोजते हैं तो क्या हमारे यहाँ स्कॉलरशिप पर भी बेस्ड?
1: हमारा संस्थान डिफरेंट स्कॉलरशिप देता है, मेरिटोरियस स्कॉलरशिप देता है, उसमें एक क्राइटेरिया बना है 9200 पे आपका यूजी अगर आप करना चाहते हैं BA LLB करना चाहते हैं तो वहाँ पे 50% आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे ही वो सारी ट्यूशन फीस पे एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा मास्टर्स में भी यही व्यवस्था है और उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप 9200% का एक पूरा बॉक्सेस बने हुए 9200 और 80.9% तो वहाँ पर बच्चों को सुविधा स्कॉलरशिप की अवेलेबल है। इन स्कॉलरशिप के अलावा भी हमारे यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा जो एलुमिनाई है उनके लिए स्कॉलरशिप है, आर्मी पर्सोनल्स के लिए स्कॉलरशिप है, साथ ही साथ जो मार्टियर्स हैं उनके डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी हमारी संस्था जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है।
0: मैम यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करें तो किस तरह का स्टूडेंट को यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है?
1: पंकज जी मैं आपको बताऊं कि हमारी जो संस्था है, हमारा जो सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, वो केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है और हम लोग जो है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं और हमारा संस्थान कंटिन्यूस बच्चों को जो एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करते हुए उनको मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन कराता है, उनको क्लाइंट काउंसलिंग सिखाता है, जजमेंट राइटिंग कराता है, कोर्ट विजिट, जेल विजिट, लोक अदालत विजिट, ये सब कराता है। इसके साथ ही साथ हमारे संस्था में जो एजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक हमारा फ्री लीगल एड क्लिनिक है जहां पर बच्चे जो है क्लिनिकल सारे एस्पेक्ट सीखते हैं और फ्री लीगल एजुकेशन वहां फ्री लीगल एड उनको प्रोवाइड कराई जाती है। दोज हु आर रिक्वायर्ड द फ्री लीगल एड, जिनको विधिक सहायता की आवश्यकता होती है वो हमारे यहाँ आकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करते हैं और ये 24/7 हमारे यहाँ चलता है संस्थान में। तो हमारे जो बच्चे हैं वो क्लासरूम तक सीमित नहीं है, वो फील्ड में जाके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख सकते हैं जिससे कि वो रियल वर्ल्ड में एंटर करने से पहले, प्रोफेशनलिज्म में एंटर करने से पहले वो सारी विधा सीख जाते हैं कि उन्हें किस तरह से आगे डील करना होगा।
0: मैम करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, जो भी कोर्सेज आपने बताया यूजी के हैं या पीजी के हैं तो आगे करियर में वो क्या क्या कर सकते हैं?
1: पंकज जी विधि के क्षेत्र में जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। आप BA LLB का कोर्स करने के बाद आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, आप डिफरेंट लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी लॉ फर्म बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें तो आप जुडिशरी के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं, बैंक के क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल विधि के क्षेत्र जो ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट में विधि जो एक्सपर्ट्स हैं लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर BLLB के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप है और आप कुछ भी, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी है, आजकल फैशन लॉ, एंटरटेनमेंट लॉ, स्पोर्ट्स लॉ, बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहाँ पर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके पास बहुत सारा स्कोप है। साथ ही साथ अगर हम मास्टर्स की बात करें तो बच्चा BLLB करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद जब मास्टर्स करता है, LLM करता है, तो LLM करने के बाद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो एकेडमिक्स में जा सकता है, वो UGC NAT क्लियर कर सकता है, PhD कर सकता है, रिसर्च कुछ ऑप्ट कर सकता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो LLM फर्स्ट ईयर करने के बाद, मास्टर्स का पहला साल करने के बाद ही UGC NAT क्लियर कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा संकेत है हम लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर इन लेटर और स्पिट हम फॉलो करते हैं कि 75% अटेंडेंस है तो वो उसको बच्चा करता है और उसका रिजल्ट हमें मिलता है, उसका आउटकम हमें मिलता है।
0: मैं वैसे तो हम लगभग सभी बातें इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी जिन भी बच्चों तक ये हमारा पॉडकास्ट पहुंच रहा है और आगे जुडिशरी के क्षेत्र में या आगे वकालत के क्षेत्र में अपना करियर जो बच्चे देखते हैं इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके पास अगर थोड़ी सी क्वेरी अभी बच जाती है तो क्या रास्ता है, किस तरीके से वो कॉलेज जा सकते हैं, एड्रेस क्या है?
1: हमारा जो प्रमुख संस्थान है ये NH 58 पर एस्टैब्लिश है, आप कभी भी आकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आकर हमसे क्वेरी कर सकते हैं।
0: तो अभी अभी आपने सुना सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर डॉक्टर रीना बिश्नोई मैम को, और उम्मीद है तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। एंड अब आपको ये चुनना है कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको आगे क्या करना है, अगर आप लॉ के क्षेत्र में आना चाहते हैं और PG आपको करना है तो आपको क्या करना है वो आप समझ सकते हैं। बाकी अभी हम सुनने जा रहे हैं उन बच्चों को जो सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हें।
2: जय हिंद, मेरा नाम सृष्टि सिरोही है और मैं BLLB थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आज आपके साथ सुभारती से जुड़े अनुभव साझा करूंगी। जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था तो लगा 12th के बाद क्लास टीचर ने जो सपोर्ट किया ऐसा सपोर्ट कहाँ ही मिलेगा किसी कॉलेज में, पर यहाँ का मेंटर मेंटी सिस्टम एक स्ट्रेंथ बना और साथ ही ऐसी गाइडेंस दी कि जो आज तक इतना सपोर्ट करती है कि जब भी कोई जरूरत पड़े तो सिर्फ उनसे संपर्क साध लिया जाए तो वे हर मुश्किल हल कर देते हैं। दूसरा, यहाँ की लाइब्रेरी जो हर प्रकार के सब्सक्रिप्शन और साथ ही जर्नल्स और न्यूज़पेपर और छोटी से बड़ी बुक्स हमें प्रोवाइड करती हैं। सुभारती के अगर ब्लॉक्स में घूमो या कैंपस को विजिट करो तो देखोगे कर्नल लक्ष्मी सहगल से लेकर झलकारी देवी, जिनके नाम इतिहास में छुपे रह गए, जो सुभारती यूनिवर्सिटी ने अपने आंगन में उन्हें जगा दी और साथ ही उनका नाम अमर कर दिया। सुभारती यूनिवर्सिटी के 4 क्लब, कल्चरल, लिटरेरी, इनोवेशन और स्पोर्ट्स क्लब, बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके इंटरेस्ट से जुड़ी चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए। और साथ ही सबसे अच्छा, सुभारती के टीचर्स जो हमें हमारे फ्रेंड्स और साथ ही गुरु दोनों प्रतीत होते हैं। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगी, सुभारती सिर्फ करियर ही नहीं बनाता, यह एक चरित्र का निर्माण करता है। धन्यवाद।
3: जय हिंद, मैं ओम ठाकुर, विधि संकाय के चतुर्थ वर्ष का छात्र। जब सुभारती के अंदर मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ तो मुझे अपने 5 साल के जर्नी का वो पहला साल याद आता है। घर से इतनी दूर, मन में हजारों शंकाएं, परंतु यहाँ के माहौल ने उन सभी शंकाओं को क्षण भर में दूर कर दिया। बात अगर एकेडमिक्स की करूँ तो मैं सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, अंग्रेजी में हाथ जरा तंग थी। ना केवल मैं, मेरे घर वाले भी परेशान थे कि आखिर कैसे मैं इन चीजों को मैनेज कर पाऊंगा। मगर कॉलेज और टीचर्स का जो सपोर्ट मुझे और मेरे जैसे अन्य बच्चों को मिला, मैं आज ये कह सकता हूँ कि अब लैंग्वेज हमारे एकेडमिक्स में बैरियर नहीं रहा। साथ ही मूड कोट एक्सरसाइज, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस समय समय पर होते रहते हैं, जिनकी मदद से हम लॉ को ना केवल किताबों में बल्कि उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझते हैं। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करूं तो यूथ पार्लियामेंट्स, डिबेट्स और अन्य कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से सुभारती अवसरों का भंडार है। और यही कारण है कि मेरे जैसा एक छात्र जिसने 12वीं तक कभी माइक भी नहीं पकड़ी थी, वह आज राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ना केवल प्रतिभाग कर रहा है बल्कि मैंने कई प्रतियोगिताएं जीती भी है। और मेरे जैसे हजारों छात्र हैं जो अलग अलग मंचों पर देश और सुभारती का नाम रोशन कर रहे हैं। कहते हैं अ जर्नी विच वेल बिगन इज ऑलमोस्ट हाफ डन। जिस दिन मैंने सुभारती को चुना, विधि क्षेत्र की इस जर्नी का वह शुरुआत था जिसने मेरे सफर को आधा तय कर दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता का मूल मंत्र जो मैं आज यहाँ से लेकर जाऊंगा, वो बचे खुचे मुसीबतों से भी मुझे विजय प्राप्त करवाएगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा, प्राउड टू बी सुभारतीयन।
0: तो अभी अभी आपने उन छात्रों को सुना जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में। बाकी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। चलते चलते एक मैसेज हम जरूर आपसे लेना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए जिन तक हमारा ये पॉडकास्ट पहुंच रहा है।
1: मैं अब एक केवल यही वाक्य कहना चाहूंगी बच्चों से कि आप अपने करियर पे फोकस करें, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे अपने जो भी आपने क्षेत्र चुना है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप अपना टारगेट सेट करें एंड हिट द टारगेट, तभी आप जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और शिक्षा का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ये बात आपने माइंड में बिठा लीजिए कि शिक्षा का उद्देश्य आपको सेवाएं देना है। सेवाएं किसको देना है? राष्ट्र को देना है। बिकॉज हम किस पर बिलीव करते हैं? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। विद दिस वर्ड, जय हिंद जय भारत।
0: बिल्कुल बात सही है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एंड उम्मीद है आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। हम जल्द ही मिलेंगे किसी नए अतिथि के साथ, तब तक मैं भी कुछ बातें आपसे कहकर जाता हूँ हमेशा की तरह, कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से, प्लीज हेलमेट लगाया कीजिए, और फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाया कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही जुड़े रहिए आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के साथ। जय हिंद जय भारत।

डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आएं हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय NH58 सुभारतीपुरम मेरठ में।

आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।
1: शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि। आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, आप डीन प्रोफेसर हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। सर स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद पंकज जी, जय हिंद।
0: सर केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ

0: साइंस के बारे में आज बातें करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में, किस प्रकार के कोर्सेज हम यहाँ पर चला रहे हैं।
1: जय हिंद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में बता पाऊंगा। देखिए, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ का एक अहम कॉलेज है और जिसमें कि हम विज्ञान से जुड़े सभी कोर्सेज को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, बेसिक साइंसेज के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हैं, एग्रीकल्चर के हैं और फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं।
0: सर, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समझना चाहेंगे, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज कौन है, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं।
1: जी, देखिए, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज हमारे जो हैं वो सभी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना जरूरी है, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स के साथ विद्यार्थी जो उत्तीर्ण करते हैं वो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी पीसीएम या पीसीबी वाला विद्यार्थी उसमें प्रवेश ले सकता है।
0: अब थोड़ा सर आगे चलते हैं और जानते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद तो आपने ये सभी कोर्सेज बताए, अब इसमें आगे अगर कोई मास्टर में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे ही कॉलेज में पूर्ण व्यवस्था है। सभी विभाग जितने भी हैं हमारे यहाँ पर वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, सभी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या कहीं के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी जो न्यूनतम अर्हता है वो समान है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उसने यदि उत्तीर्ण किया है तो हमारे यहाँ पे वो सभी जितने भी कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें वो प्रवेश लेने के लिए अर्ह हैं।
0: सर, अभी जैसे हमने आफ्टर ट्वेल्थ की भी समझ ली और आफ्टर ग्रेजुएशन की ये समझ लिए हैं कोर्सेज, अब एक बात ये है जैसे ये कोर्सेज कर लेता है बच्चा, चाहे वो बैचलर में कर ले या मास्टर्स में कर ले, करियर के ऑप्शंस उसके लिए क्या क्या हो जाते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल कोई भी विद्यार्थी हो या माता पिता हो सबका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके विद्यार्थी को एक अच्छी जॉब मिल सके। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है और हमारा जो फोकस है वो केवल किताबी ज्ञान देने पर नहीं है, उसके अलावा हमने अपने जो कुरिकुलम है उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और जो आपके कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो स्किल बेस्ड नॉलेज है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी जॉब के लिए तैयार करते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर, अब एक सवाल ये भी आता है कि तमाम कॉलेजेस हैं लेकिन छात्र छात्राएं जो हैं 12वीं पास करके आने वाले हों या ग्रेजुएट करके आने वाले हों वो केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस क्यों चुने?
1: देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा कुरिकुलम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आधारित है। हमारा पूरा फोकस बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना है ताकि जब वो अपनी डिग्री लेकर समाज में उतरे तो वो अपने आप को साबित कर सके। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होने की वजह से, उनके पास स्किल्स होने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे कॉलेज से जो विद्यार्थी आते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं।
0: सर, अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं और इस साल ट्वेल्थ करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, वो कॉलेज जाना चाहें तो क्या एड्रेस है, विजिट के लिए एक बार बता दीजिए।
1: देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों को जो भी विजिट करना चाहें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद वहीं पर आप किसी से पूछेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस, साइंस कॉलेज, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा कॉलेज उनको दिखाई देगा। वहां पे जाइए रिसेप्शन पे, हम उनको अपना पूरा कॉलेज के बारे में वहां पे बताएंगे।
0: सर, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या विशेषता है जो किसी भी छात्र या छात्रा को अट्रैक्ट करेगी यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए?
1: जी पंकज जी, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, कॉलेज के अंदर भी एक प्लेसमेंट सेल है और विश्वविद्यालय की एक प्लेसमेंट सेल है। तो हम जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो प्रथम वर्ष से ही उसको पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के द्वारा, इंग्लिश कम्युनिटी क्लासेस के द्वारा उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं ताकि वो अपने आप को 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो अपने

0: को तैयार कर सके। दूसरा मेरा कहना जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। हमारी जो लैबोरेटरीज है, मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया एक बार आएं और हमारी लैबोरेटरीज देखें। हमारे पास जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमारी लैबोरेटरीज में हैं और हमारे विद्यार्थी उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं आईआईटीज एनआईटीज और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं। वो हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि वॉट इंडस्ट्री वॉन्ट, कि आज इंडस्ट्री क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों की स्किल्स को तैयार करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की तैयारी केरल वर्मा सुभारती कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा होगा।
1: सर, एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
0: देखिए, एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए। वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन आपका एडमिशन हो जाता है।
1: तो अभी आपने सुना केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन सर को। उन्होंने तमाम कोर्सेज के बारे में बताया जो आफ्टर ट्वेल्थ आप कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। अब उन्हें सुनते हैं, उन छात्र छात्राओं को जो यहां पर कोर्सेज कर रहे हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे। आइए उन्हें सुनते हैं।
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूं और मैंने 2024 में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर हूं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड रियल रिसर्च की जरूरत पड़ती है एंड इस कॉलेज ने मुझे रियल रिसर्च का एक्सपोजर प्रोवाइड करा एंड फैकल्टी के गाइडेंस की हेल्प से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी काम किया है एंड उसके साथ साथ उनके गाइडेंस एंड उनके सपोर्ट से एंड उनके हेल्प से मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी, जिसकी हेल्प से मैंने एक बायोमेडिकल डिवाइस पे भी काम किया जिसको मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी करा है एट AIU। इस कॉलेज ने मुझे लैब स्किल्स एंड रियल एक्सपोजर एंड उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड बहुत गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंट मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी से जैसे डायनेमिक फील्ड में। एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने बेस्ट कॉलेज चूज करा है एंड आपको भी ये कॉलेज चूज करना चाहिए। अगर आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर चाहिए, आपको बढ़िया लैब्स चाहिए एंड आपको रियल रिसर्च पे काम करना है एंड उसको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है। थैंक यू।
3: जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कुणाल चौधरी एंड आई एम करंटली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस। आई हैव टेकन माय एडमिशन इन 2024 एंड आई हैव प्रेजेंटेड माय रिसर्च एट AIU एंड आल्सो प्रेजेंटेड माय बायोमेडिकल बेस्ड स्टार्टअप एट AIU। केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस इज अ वेरी गुड कॉलेज। इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन लैब ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो द फैकल्टी हेयर आर वेल एक्सपीरियंस। दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द साइंटिफिक टेम्परामेंट आउट देयर। The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical based startups and biotechnology. Thank you. Jai Hind.
4: Jai Hind everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. कोई ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा होता है हमें नजर भी नहीं आता, वो मैग्नीफाई होकर कितना खूबसूरत लगता है। एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू परस्यू माइक्रोबायोलॉजी एज माय करियर एंड टू अकम्प्लिश दिस ड्रीम आई चोज सुभारती कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती बल्कि प्रैक्टिकल्स पर भी फोकस किया जाता है। यहाँ की वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट That is role of enzymes in food and feed industry, जो मेरे आगे के करियर से भी रिलेटेड है। यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पर भी ले जाया जाता है, जिसमें से एक था मदर डेयरी, which is my dream company. आगे जाकर मैं food industries में काम करना चाहती हूँ as a food analyst, ताकि मैं food safety ensure कर सकूँ for a better India. Overall, सुभारती कॉलेज मेरे फ्यूचर plans को shape करने में मेरी help कर रहा है and I'm proud to be a part of it. जय हिंद, जय भारत।
5: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम जानवी है और मैं BSc फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हमारे कॉलेज केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस की फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ।
6: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं BSc सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फॉरेंसिक साइंस में एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस।
5: हमारे यहाँ नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जो कि हमारे

0: करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इक्वली मिलती है। इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड टॉक्सिकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ते हैं, बट हम उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं।
2: जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग लैबोरेटरीज में ये जानते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सॉलिड एविडेंसेस। इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी भी करते हैं, फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, और हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं, कैसे हम फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और ऑब्लिक्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू यूवी लाइट, आईआर लाइट एंड माइक्रोस्कोप। हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, ये सब हम अपनी लैबोरेटरीज में सीखते हैं और सारे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिससे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आए और हमारी लैब विजिट करें और देखें कि यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं चीजें सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच को सामने लाना और जस्टिस को सपोर्ट करना, और हमारे टीचर्स हमें इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं। मैं अपने कॉलेज के लिए और अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।
3: तो अभी आपने सभी स्टूडेंट्स को सुना, सबने अपने अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ साझा किए, और आप भी आइए केरल अलुमनास भारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लीजिए। आप इस साल 12th कर रहे हैं तो उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं जो आफ्टर 12th होंगे, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्स आप यहां पर आकर कर सकते हैं। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने तमाम कोर्सेज की जानकारी आपने हमें दी। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे।
4: मेरा बस यही संदेश है सभी विद्यार्थियों को कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी।

हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी नहीं होती। अगर मन उदास है तो छुपाइए मत, बात कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। अगर डिप्रेशन है तो उसे दूर भगाइए, अपनों से जुड़िए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

आज ग्लास में बचाया हुआ आधा पानी कल किसी की प्यास बुझा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही जिंदगी। इसीलिए पानी बचाइए, कल बचाइए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स, लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं, इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

बेटी बोझ नहीं घर की शान है, उसे पंख दीजिए, वो आसमान छू लेगी। बेटी को पढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।

ट्रैफिक जैम का गुस्सा अब गानों में निकालो। रेड लाइट हो या लंबा रास्ता, हम हैं आपके बेस्ट ट्रैवल पार्टनर। आज ही डाउनलोड करें आजाद हिंद रेडियो ऐप और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: ओटीपी किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

दफ्तर की थकान और दिन भर की भागदौड़, अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का और अच्छी नॉलेजेबल बातें सुनने का, वो भी प्यारे गीतों के साथ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

उंगली पर लगने वाली स्याही सिर्फ निशानी नहीं, आपकी ताकत है। शिकायत करने से अच्छा है सही चुनाव करें। हर वोट कीमती है, इसीलिए अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएं और वोट करने का मौका मिलने पर जरूर वोट करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: स्क्रीन से नजरें हटाइए, अपनों से नजरें मिलाइए। दिन में कम से कम एक घंटा अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें और असली बातें करें। डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक असली सुकून के लिए। कनेक्ट विद पीपल नॉट वाईफाई। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से चुपके, तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। To know more, call now 9639010313.

0: जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि। आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, आप डीन प्रोफेसर हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। सर स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद पंकज जी, जय हिंद।
0: सर, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में आज बातें करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में, किस प्रकार के कोर्सेज हम यहाँ पर चला रहे हैं।
1: जय हिंद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में बता पाऊंगा। देखिए, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ का एक अहम कॉलेज है, और जिसमें कि हम विज्ञान से जुड़े सभी कोर्सेज को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, बेसिक साइंसेज के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, और फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं।
0: सर, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समझना चाहेंगे, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज कौन है, सबसे पहले उन पे बात कर लेते हैं।
1: जी जी, देखिए, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज हमारे जो हैं वो सभी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना जरूरी है, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स के साथ विद्यार्थी जो उत्तीर्ण करते हैं वो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी पीसीएम या पीसीबी वाला विद्यार्थी उसमें प्रवेश ले सकता है।
0: अब थोड़ा सर आगे चलते हैं और जानते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद तो आपने ये सभी कोर्सेज बताए, अब इसमें आगे अगर कोई मास्टर में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे ही कॉलेज में पूर्ण व्यवस्था है। सभी विभाग जितने भी हैं हमारे यहाँ पर वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, सभी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या कहीं के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी जो न्यूनतम अर्हता है वो समान है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उसने यदि उत्तीर्ण किया है तो हमारे यहाँ पे वो सभी जितने भी कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उसमें वो प्रवेश लेने के लिए अर्ह हैं।
0: सर, अभी जैसे हमने आफ्टर ट्वेल्थ की भी समझ ली और आफ्टर ग्रेजुएशन की ये समझ लिए हैं कोर्सेज, अब एक बात ये है, जैसे ये कोर्सेज कर लेता है बच्चा, चाहे वो बैचलर में कर ले या मास्टर्स में कर ले, करियर के ऑप्शंस उसके लिए क्या क्या हो जाते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल कोई भी विद्यार्थी हो या माता पिता हो, सबका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके विद्यार्थी को एक अच्छी जॉब मिल सके। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है, और हमारा जो फोकस है वो केवल किताबी ज्ञान देने पर नहीं है, उसके अलावा हमने अपने जो कुरिकुलम है उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और जो आपके कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो स्किल बेस्ड नॉलेज है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी जॉब के लिए तैयार करते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर, अब एक सवाल ये भी आता है कि तमाम कॉलेजेस हैं लेकिन छात्र छात्राएं जो हैं 12वीं पास करके आने वाले हों या ग्रेजुएट करके आने वाले हों, वो केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस क्यों चुने?
1: देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा कुरिकुलम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आधारित है। हमारा पूरा फोकस बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना है ताकि जब वो अपनी डिग्री लेकर समाज में उतरे तो वो अपने आप को साबित कर सके। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होने की वजह से, उनके पास स्किल्स होने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे कॉलेज से जो विद्यार्थी आते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं।
0: सर, अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं और इस साल ट्वेल्थ करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, वो कॉलेज जाना चाहें तो क्या एड्रेस है विजिट के लिए, एक बार बता दीजिए।
1: देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों को जो भी विजिट करना चाहें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद वहीं पर आप किसी से पूछेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस साइंस कॉलेज, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा कॉलेज उनको दिखाई देगा। वहां पे जाइए रिसेप्शन पे, हम उनको अपना पूरा कॉलेज के बारे में वहां पे बताएंगे।
0: सर, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या विशेषता है जो किसी भी छात्र या छात्रा को अट्रैक्ट करेगी यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए?
1: जी जी पंकज जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, कॉलेज के अंदर भी एक प्लेसमेंट सेल है और विश्वविद्यालय की एक प्लेसमेंट सेल है। तो हम जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो प्रथम वर्ष से ही उसको पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के द्वारा, इंग्लिश कम्युनिटी क्लासेस के द्वारा उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो अपने आप को 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो अपने आप को तैयार कर सके। दूसरा मेरा कहना जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। हमारी जो लैबोरेटरीज है, मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया एक बार आएं और हमारी लैबोरेटरीज देखें। हमारे पास जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमारी लैबोरेटरीज में हैं और हमारे विद्यार्थी उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं IITs, NITs और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं। वो हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि वॉट इंडस्ट्री वॉन्ट, कि आज इंडस्ट्री क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों की स्किल्स को तैयार करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की तैयारी केरल वर्मा सुभारती कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा होगा।
0: सर, एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
1: देखिए, एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए। वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन आपका एडमिशन हो जाता है।
0: तो अभी आपने सुना केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन सर को। उन्होंने तमाम कोर्सेज के बारे में बताया जो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। अब उन्हें सुनते हैं, उन छात्र छात्राओं को जो यहां पर कोर्सेज कर रहे हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे। आइए उन्हें सुनते हैं।
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूं और मैंने 2024 में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर हूं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड रियल रिसर्च की जरूरत पड़ती है एंड इस कॉलेज ने मुझे रियल रिसर्च का एक्सपोजर प्रोवाइड करा एंड फैकल्टी के गाइडेंस की हेल्प से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी काम किया है एंड उसके साथ साथ उनके गाइडेंस एंड उनके सपोर्ट से एंड उनके हेल्प से मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी, जिसके हेल्प से मैंने एक बायोमेडिकल डिवाइस पे भी काम किया जिसको मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी करा है एट AIU। इस कॉलेज ने मुझे लैब स्किल्स एंड रियल एक्सपोजर एंड उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड बहुत गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंट मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी से जैसे डायनेमिक फील्ड में। एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने बेस्ट कॉलेज चूज करा है एंड आपको भी ये कॉलेज चूज करना चाहिए। अगर आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर चाहिए, आपको बढ़िया लैब्स चाहिए एंड आपको रियल रिसर्च पे काम करना है एंड उसको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है। थैंक यू।
3: जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कुणाल चौधरी एंड आई एम करेंटली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस। आई हैव टेकन माय एडमिशन इन 2024 एंड आई हैव प्रेजेंटेड माय रिसर्च एट AIU एंड आल्सो प्रेजेंटेड माय बायोमेडिकल बेस्ड स्टार्टअप एट AIU। केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस इज अ वेरी गुड कॉलेज। इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन लैब ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो द फैकल्टी हेयर आर वेल एक्सपीरियंस। दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द साइंटिफिक टेम्परामेंट आउट देयर। The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical based startups and biotechnology. Thank you. Jai Hind.
4: Jai Hind everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. कोई ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा होता है हमें नजर भी नहीं आता, वो मैग्नीफाई होकर कितना खूबसूरत लगता है। एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू परस्यू माइक्रोबायोलॉजी एज माय करियर एंड टू अकम्प्लिश दिस ड्रीम आई चोज सुभारती कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती बल्कि प्रैक्टिकल्स पर भी फोकस किया जाता है। यहाँ की वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट That is role of enzymes in food and feed industry, जो मेरे आगे के करियर से भी रिलेटेड है। यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पर भी ले जाया जाता है, जिसमें से एक था मदर डेयरी, which is my dream company. आगे जाकर मैं फूड इंडस्ट्रीज में काम करना चाहती हूँ as a food analyst. ताकि मैं फूड सेफ्टी इंश्योर कर सकूं फॉर अ बेटर इंडिया. ओवरऑल सुभारती कॉलेज मेरे फ्यूचर प्लान्स को शेप करने में मेरी हेल्प कर रहा है एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. जय हिंद जय भारत.
5: जय हिंद एवरीवन. मेरा नाम जानवी है और मैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ. मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हमारे कॉलेज केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस की फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ.
6: जय हिंद एवरीवन. मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं बीएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फॉरेंसिक साइंस में एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस.
5: हमारे यहाँ नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जो कि हमारे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इक्वली मिलती है. इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड टॉक्सिकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ते हैं बट हम उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं.
6: जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं तो हम लोग लैबोरेटरीज में ये जानते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सॉलिड एविडेंसेस. इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी भी करते हैं, फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट. और हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं, कैसे हम फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और ऑब्लिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू यूवी लाइट, आईआर लाइट एंड माइक्रोस्कोप. हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं ये सब हम अपनी लैबोरेटरीज में सीखते हैं और सारे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिससे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को. और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आए और हमारी लैब विजिट करें और देखें कि यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं चीजें सीखने के लिए. थैंक यू सो मच.
5: मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सच को सामने लाना और जस्टिस को सपोर्ट करना. और हमारे टीचर्स हमें इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं. मैं अपने कॉलेज के लिए और अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गाइड करते हैं. थैंक यू सो मच.
0: तो अभी आपने सभी स्टूडेंट्स को सुना, सबने अपने अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ साझा किए और आप भी आइए केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लीजिए. आप इस साल 12th कर रहे हैं तो उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं जो आफ्टर 12th होंगे, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्स आप यहां पर आकर कर सकते हैं. बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने तमाम कोर्सेज की जानकारी आपने हमें दी. चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे.
1: मेरा बस यही संदेश है सभी विद्यार्थियों को कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क. मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी.

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे, मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे

0: मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आंख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ, लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: Shernaxus.
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: पढ़ाई तो सब जगह होती है, पर एक्सीलेंस का होना भी तो जरूरी है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी इज द रोड टू एक्सीलेंस विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद अ सलूब्रियस एनवायरनमेंट, हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पिटेंट फैकल्टी।
1: 18 कॉलेजेस एंड 220 प्लस प्रोग्राम्स। विजिट www.subharti.org।

0: जय हिंद। कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी मेरठ,
1: अ प्लेस वेयर सोल्जर्स आर बोर्न टू सर्व द नेशन।
0: वी इम्पार्ट ट्रेनिंग टू यंग एस्पिरेंट्स हु एम टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस टू सर्व द मदरलैंड।
1: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी, जहां कराई जाती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के लिए कली ट्रेनिंग। रिटन एग्जाम्स जैसे NDA, CDS और SSB इंटरव्यूज को भी करें एक बार में क्लियर विद सुभारती डिफेंस एकेडमी।
0: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी उनके लिए जो नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा करना चाहते हैं।
1: तो आज ही ज्वाइन करें। फॉर मोर क्वेरीज यू मे कॉन्टेक्ट 9045954341 एंड 9068899913, और यू कैन ऑल्सो विजिट www.subhatidefense.com।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभा आरती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।